इस तरह से हमारे जिंदगी में शामिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएं। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

और ये प्यार करते ही तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप।

दीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे। हमारी आर्य साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानु अलका यागनी क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फन जॉनी नंबर वन।

कर दिया और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नैतिक लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर ये आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

और ऐ दिल मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग सुपरहिट फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है, नहीं बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नैथी जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शहरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शहरा मानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बस बांध में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक
1: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखते होंद एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों, अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

तौबा चक्कड़ में न आना और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन तरह से आना ये गीत आपको बताते हैं।

और तुम इस तरह से और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना। तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

आए जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बदन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी, रोमांटिक सॉन्ग वक्त, सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे, वो फिगर नाम है वक्त 1965 का।

हम जब सिमट के आँख और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए परमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: और हेमंत दादा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कभी न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि न बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

0: जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो हमारे यारो।
1: लोग प्यार करने से पहले पहले सोचते हैं और प्यार के इस तरह से इजहार करते हैं। चले हम आपको सुनाते हैं।

जी हाँ लता जी, मैं तो मुकेश, मैं तो मुकेश और लता जी मिल के आपको सुनाए फिल्म फिल्म मैं और मेरा भाई में अर्जुन के साज पर, अर्जुन के साज पर ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए बदलाव के तौर पर हम आपको ये सुनाते हैं यहाँ, चलो सुनते हैं इस तरह से बदलाव के तौर पर आ रहा है ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

वाह क्या फीलिंग है, इतनी फीलिंग से पहचान लेंगे, वाह क्या बात है। चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम पेश कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं रफ़ी साहब की ये गीत, क्या ख्याल है?

मैंने चांद देखा है, ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में है। क्या ख्याल है, हवा हवाई

आई आप सुन रहे थे कृष्णमूर्ति, कविता कृष्णमूर्ति जी आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फिल्म मिस्टर इंडिया में से निकाल कर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जो लोग चुन की मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए, क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, आप भी हैं मैं भी हूँ, बस सुन लीजिएगा।

कुमार सानू। जी हाँ, कुमार सानू आपको सुनाए हैं। कार्यक्रम में हमने पेश किए ये शानदार गीत सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए गीत रखे हैं, तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं। प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत है इस तरह से।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे, ये गीत सुनाया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुने। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में। हमने पेश की फिल्म कलंक में से निकाले हैं, और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साज पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको, और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइयो निगती इंद्रियन सस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वी पर आप चुने जो लोग चूंटिए मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरिवीराम रुना लैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तिनके, फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथ यहाँ नहीं जाना कि जी ना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुएट चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहेंगे रख प्लेयर में रखे माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: तुम्ही ने दिल को दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन ससन सेफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं। बहरहाल नेकतीन सेफन नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में। हमने चला दी, शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते हैं, बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म दर्द में से निकाले हैं निगहतिन एन तख्त का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं फॉन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश नीक दिन फाइव सही में तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फॉर 500 हिंदुस्तानी रेडियो। तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती हैं।

0: अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाएं। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा।
1: मित्रों, सुख शांति संसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, तुम्हारी असली सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है मित्रों। और यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है मित्रों। और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वे होती है मित्रों जब व्यक्ति के पास खाने को हो, ध्यान करना, जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए और पैसा हो लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। वाह, क्या बात है मित्रों। ये तीन का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है मित्रों। और जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप अपने गलतियों को स्वीकार कीजिए मित्रों।

दोस्तों, महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है। आप ऐसे करते हो? खुले मन से भूल को स्वीकार करते हो? तुम तो कसूर दूसरों पे ठोप देते हो। आपका बात नहीं है, वो आपके पीछे वाला जो वहाँ खड़े हुए हैं ना, उनकी बात हम बता रहे हैं, उनके बात है। और उसमें सुधार करता है। गलती को स्वीकार किया और आगे में चलकर सुधार भी किया मित्रों, तो ये सही व्यक्ति होते हैं। और यार दास का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता है मित्रों, बुरा नहीं होता है। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है। सब बतिया सोच के बैठल रहिए तो खपड़िया खराब हो जाएगा मित्रों। तो इसलिए जो जरूरी बातें नहीं है उसे भूल जाओ, फेंक दो, गोतरों में फेंक दो मित्रों। और सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्मा पीरा को बढ़ाता है। बोले हियाँ पीरा महुआ पिराई, सोच के बैठिए जरूर पिराएगा मित्रों। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है। इसीलिए ये सीखा जाए कि क्या सहजना है और क्या छोड़ देना है। छोड़ दियो तो आपका भलाई होगा मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत भलाई होगी।

0: दोस्तों, मोहब्बत खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। मित्रों, ये उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है, तो केवल आंखें नहीं आत्मा भी कांप जाती है। जैसे आपके धोखा मिलल एकदम गड़बड़ा गए लो, आपका बात नहीं, वो पीछे वाला जो आपके पीछे खड़े वो उनकी बात है। मित्रों, तो आत्मा भी कांप जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं है जो तुम्हारे सामने कही जाती है मित्रों, बल्कि वे है जो तुम्हारे पीछे कही जाती है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। तोरिया कैसे है वो समय बतलावे है, और ना कोई और। मित्रों, ना कोई और।
1: इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चले जाते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन ही मिल गया होगा। यही रीत है ये संसार की।

दोस्तों, टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। मित्रों, कभी कभी वे केवल समझौता रह जाता है। दुई पति पत्नी बिछड़ गए ने, फिर सलाह कर ले लें, मैं फिर से संगे रहो, पहले जैसा नहीं हो पाएगा। खबरदार खबरदार मित्रों, प्रेम वहाँ नहीं है, वहाँ समझौता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, जो ठीक लगे वैसे ही दूसरों से किया करो। मित्रों, अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, वही सम्मान, वही प्रेम मित्रों, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। यही नियमवा है मित्रों, और कुछ नहीं है।

मित्रों, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। आप समय को रोक नहीं सकते, काम असंभव बात है, इतोरिया ना चलेगा। मित्रों, रोक नहीं सकते हो समय को आप। जो समय एक बार निकल गया मित्रों, वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो जीवन का हर क्षण, ध्यान करो, जीवन का हर क्षण, हर पल एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं, तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है, बहुत बड़का पेड़। तो आप समय का कदर करो, समय आपका भी कदर करे, बड़ा इंसान बनो मित्रों। और जो व्यक्ति समय का आदर करता है, वो ही जीवन में उन्नति करता है। और समय की कीमत वही समझता है मित्रों, जिसने उसे गंवा दिया हो। जैसे तुम नहीं, ठीक बात, बहुत ठीक बात, आपने समय को नहीं गंवाया, सही उपयोग करो मित्रों। और ये नक्षत्रों से भी तेज है ये समय, और क्षणों में, एक पल में जीवन की दिशा बदल सकता है, एकदम बदल देंगे जीवन की दिशा मित्रों। सौंदर्य सा भी

मित्रों, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय ही, समय का आदर करना मित्रों स्वयं का आदर करना है। आपने समय का कदर किया, समय ने आपका कदर भी किया। उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा आपके साथ भी मित्रों। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं, और समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है मित्रों, बिल्कुल आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति, ध्यान करिए, दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसीलिए जीवन को सफल बनाना है मित्रों तो समय को व्यर्थ ना गंवाए। सोमवार समय को ना फेंक दे बेकार को, दिन भर सूतल लगिए बोलिए हम कुछ ना हासिल कर पाएगा, खबरदार पास हो गए। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती है मित्रों, अने स्टॉप गियू। घड़िया के टिक टिक टिक टिक चलते हैं, तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे, इसीलिए उसे पहचानिए, सराहिए मित्रों, और सही दिशा में उपयोग कीजिए। सही दिशा में उपयोग कीजिए मतलब सही ओर अपने जीवन को ले जाइए मित्रों, सही ओर।

नई सुबह का नया नजराना, ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो उठो, तैयार हो जाओ, खुशियों से भरा रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को राम राम, नमस्ते। धर्म करम फाहुन नारी के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुनेंगे। शुक्रवार है, अब माफ कीजिए दोस्तों, बृहस्पतिवार है, प्रोग्राम लाइव आप सुन रहे हैं। सितंबर के 10 तारीख हो गया है, 7:07 बीत गया है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है फाहुन के फुल टीम की ओर से सभी धर्म प्रेमियों को एक शुभ दिन प्रगत हो। साथ ही साथ हर एक जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी को एक प्यार भरा एक शुभ दिन पेश हो। अगर आप नौकरी जाने का तैयारियां कर रहे होगे तो आराम से कीजिए, और नौकरी शुरुआत की दी होगे तो वो भी आप प्रेम और प्यार से काम कीजिए दोस्तों। में आप होगे तो हमसे मोटर कार हाँकना,

कहते हैं जो जागे वो पाए, जो सोए वो खोए। तो जागो सोने वाले, भजन कार्यक्रम से आप मजा लूती है और आराम से बैठ जाइए। अगर आप पूजा पाठ में तैयारियाँ कर रहे होगे या शुरुआत कर रहे होगे तो वो भी आराम प्रेम से कीजिए।

सही बात है, दो रोज की जिंदगी है, क्यों आप गुमान करते हैं। आज आए हो कल भी जाना पड़ेगा और सब चीज यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। जो प्रेम प्यार जो भी जिंदगी में अच्छाई काम आप किए होंगे वो ही साथ जाएगा, उसी के बारे में लोग हमेशा बातचीत करते रहेंगे। मुकेश जी के आवाज़ में दुख हरो द्वारका नाच चरण में तेरी।

0: तेरी,
1: दुख हर द्वार का नाथ चरण में तेरी, हरि का ध्यान लगा मन मेरे के बाद दोस्तों एक दूसरा भजन राफी साहब के आवाज़ में आप सुनेंगे, काना काना तूने पीर का जानी। आप सभी को एक शुभ दिन, प्यार भरा दिन पेश हो फाउन के फुल टीम के ओर से।

কান্হা কান্হা তুনে তীর না জানি। বৃহস্পতিবার হ্যায় और सितंबर के 10 तारीख हो गए हैं दोस्तों, एक दो या तीन महीना रह गया तो ये साल सन 226 जो है ख़त्म हो जाएगा। हम सब मिल के कदम रखेंगे ट्वी डेसन सीफन ट्विन तक में। क्या दिन चल रहा है दोस्तों, जैसे दिन वक्त या दिन चल रहा है उसी तरह से हम सभी का उम्र भी बीत रहा है। तो जो भी करना है सोच समझ के कीजिए।

गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे के बाद हरिओम शरण का एक सुंदर सा भजन हम सब सुनेंगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे मैं आओ, धर्म करम फाहो निजारे के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

दिनों में दुनिया में चारों बगल हड़ताल हो रहा है दोस्तों, और लोग नती रामप वगैरह वगैरह, बहुत से लोग हैं जो सुबह जागते हैं तो भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आराम से जीवन कटे, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग होते हैं जो खुद अपने लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान से सिर्फ धन दौलत मांगते हैं और कुछ नहीं। तो भगवान ऐसे धन दौलत नहीं देंगे दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा।

15 मिनट बाकी है 8 बजने में, क्वार्ट फोर आख दोस्तों, 15 मिनट फोर आख हो गया है। ये प्रोग्राम आप लाइव सुन रहे हैं फाह हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

0: पूरे 8 बज रहा है। धर्म कर्म का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त करता हूँ दोस्तों। रिक्लाम और न्यूज ब्रेक, तो उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा। कहीं मत जाइए, फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो पर चू रहिए।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर

0: बजकर 5 मिनट बीत गया है, फेस मिलिटन ऊपर 8। अगर आप नौकरी का तैयारियां कर रहे होगे तो आराम से काम कीजिए, जो भी करना है दोस्तों सोच समझ के किए।
1: समझाया
0: फाहुन के फुल टीम जो है, फाहुन के टीम को से आप सभी को एक शुभ दिन प्रगत हो।

Goedemorgen Nederland, आपने सुना दोस्तों प्यार दीवाना होता है और उसके बाद भी मस्ताना होता है। ये हम तुम चोरी से बने एक जोड़ी से, चाहियो कहा वो हसूर।

हाय हाय, चुरा लिया है दिल को नजर नहीं चुराना सनम, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा कोई और न हो, खुदा न करे। घर की ओर देखता हूँ तो 2 मिनट बीत गया है, 8:05 हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है। हर एक काम के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक, 3 से 5 तो फिर 0 तार का नंबर है।

दोस्तों स्टेफानी डे जो पैन हकड़ में रहती है उन्हें 2 साल का सजा मिला तो यार कफांगसरात। बात यह है कि स्टेफानी जो है स्टेफानी एच के रिंग खा रहा था, अब जानते हैं एट के क्या होता है, तो एट के खा रहा था और फॉर फर्स्ट वर्क ही फॉरकलारें सलारस बनाकर हिपोटेक लेता था। तो इन्हें मकान था देन हाक पैन आकर और साथ ही साथ हाल रोतरडाम में भी खबाव मकान कीन के और भाड़ा पर रखते थे। तो खोजबीन किया गया कि ये स्टेफानी जो है इन्हें 2 मोटरकार है मंगा मंगा और सिर्फ खमीन तक के पैसा से जीते हैं ऐड करने से। तो जब खोजबीन किया गया डोरो तो पता लगा कि ये स्टेफानी ये फरफास सालारस रोक और वर्क फीफर्स फरक्लारिंग से बैंक से कर्जा लेता था और मकान कीन के बेचते थे और भाड़ा पर करता था। तो तुई यार खफांग उन्हें मिला। अगर आप ऐसा काम करते होगे तो पास ऑफ खबरदार।

टिक टिक मेरा दिल डोले तूने तूने ओ सनम। दोस्तों एसएलएम का फ्लिक कल के जो परमाणु से अमस्तदम आओ तो वो फ्लिक अनुलेर हो गया है। वेकन्स टेक्निस प्रॉब्लम, ये कई बार होता है, तब आईना फूट जाता है, ये होता है वो होता है, फिर भी पता नहीं क्यों ये एसएलएम जो है अपन उड़ान अभी करते रहता है, वेस कभी नहीं बनाता है, फिर भी एक काम जारी रखता है। सिंटी सी सरमाई सी, इस दुनिया से तुम आए हो। गुड मॉर्निंग नीदरलैंड।

तो ये सॉन्ग लाइफ गाया गया है, लेकिन मुझे ओरिजिनल सॉन्ग चाहिए, इसलिए ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है और लाइफ जो गाया जाता है वो दूसरे तरीका से रहता है। तो मैं खोजता हूँ, देखता हूँ कि मुझे जल्द से मिल जाता है ये ओरिजिनल सॉन्ग या नहीं। अगर नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे सॉन्ग के बाद हम आपके वादा करता हूँ कि ये सॉन्ग जरूर आपके लिए पेश करूँगा। फाह हिंदुस्तान रेडियो पर चुन रही है।

लोग कहते हैं इन एंड इन इज टू, लेकिन दिल दिल जब मिल जाता है दोस्तों, दो दिल जब मिल जाता है तो एक हो जाता है, वहाँ पर इन एंड इन इस इन एक के पर पड़ जाता है, उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि प्यार जहाँ होता है वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर गोरा काला वगैरह वगैरह लोग नहीं देखते हैं, प्यार तो प्यार होता है। अब की बार जैसे मैंने वादा किया था, किशोर दा हसीन का पुजारी किशोर कुमार के आवाज़ में फिल्म परवाना का सॉन्ग है, सिंती सी सरमाई सी, किस दुनिया से तुम आई हो।

कुमार सानू टाइगर ऑफ इंडिया कहते उन्हें, पद्मासी कुमार सानू की आवाज़ में भी ये सॉन्ग आपने सुना। दोस्तों सिया घोषाल, अतीफ असलम और सचिन गुप्ता, ये तीनों तैयार हो गया है और क्या सॉन्ग है, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। दूसरा कौन हो सकता है, सिर्फ

सभी तेरे लिए मैंने किया आँखियाँ झुकाई, जागी सारी रात वगैरह वगैरह, सिर्फ तेरे लिए। दोस्तों छोटा सा स्पॉट बने, डेक अटफका जो कि रसो का बॉन्द कोच है, वो अपन कॉन्ट्रैक्ट फलंग किया है तो ट्वी डन सी फ्रम ट्वेल्थ तक, ये अख्तन सी फ्रम तक साल का हकनार जो है वो कि रसो के साथ वीका में भाग लिया, तो अभी एक साल और वो तीन करेगा कि रसो के, पता न उसके बाद वो फिर से अपन कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग करता है या नहीं। उदित नारायण, द बेस्ट ऑफ उदित नारायण।

दिले बेकरार पहला नशा ये शराब का नशा नहीं दोस्तों, ये प्यार का नशा है। कई तरह की नशा होता है। एक दिन तेरी राहों में।

दिल तो ना कह सका एक दिन तेरी राहों में। ये आफ्रिका हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। बृहस्पतिवार है, इट इज डाउन द डार्क 3 सितंबर 2020। लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है और अब की बार जो गीत मैं चॉइस करके रखा हूँ तो वो है अरिजीत सिंह के आवाज़ में आप सुनेंगे।

दर्द भी मेरे आशिकी सिर्फ तुम ही हो और कौन हो नहीं सकता। ये पहले नजर में जादू कौन के कर दिया है दोस्तों, ये कौन सा चोर है जो आकर पहले नजर में जादू कर दिया, ये जादूगर कौन हो सकता है।

जानते हैं, नजर से बात शुरू होते हैं तो जाकर दिल में समा जाता है। अभी का हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो।

जीबी आई लव यू पहली नजर में जादू कर दिया। दोस्तों दो मिनट बीत गया है, 9:02 2:05 ये आप ही का हैप्पी सीशन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो है। और आपको मानना चाहिए अगर आपको बाहर निकलना है तो अपन छतरी या पारापली मत भूलना, कहीं कहीं पर बारिश समय समय पर गिरता है।

तेरा चेहरा जब नजर आए, अदनान सामी के आवाज में सॉन्ग भी आपने सुना। दोस्तों, खौदरा को वहाँ पर ब्रांत हुआ है, आगे लगा है, और यह बात यह है कि एक शीर है जिसमें होई बालन रखा था। तो दो नौजवान क्लैन केंद्र दोस्तों आग से खेला है और इस शीर में आग लग गया, जर कर राख हो गया है। सिपाही वहाँ पहुँचा, लेकिन कहता यूसुसी ने कहा है कि ये दो लड़का जो है ये बहुत छोटा है, इन्हें फर फॉलो करने को, इससे बातचीत करने को, यूरिडिस बातचीत करने को। तो चाहे छोटा या बड़ा दोस्तों, अगर आपके पास छोटा लड़का घर पर है तो ध्यान रखना कि ये लोग आग से मत खेले, बहुत कफार है।

अतीफ असलम दोस्तों, अतीफ असलम के और साथियों के आवाज़ों में अभी आपने ये सॉन्ग सुना। अब की बार मैं कहता हूँ पारी है नहीं, लेकिन ये होना चाहिए दोस्तों, हो सकता था सभी गायक जो है सभी का गीत पेश करने को, तो मैं चॉइस करके रखा हूँ अब की बार सोनू निगम का रोमांटिक सॉन्ग आप सभी सुनेंगे।

साहन हिंसा निरुपरा चुन है और यहाँ सारम होता है क्या हो तेरे और दर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम प्यार करे मुझसे प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार टू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरा वाला दर्द भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहन हिंसाइन रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से 5 आपको तार करना है।

अठारह का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नत यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस्टिक इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है तमारा। मलेशिया से ओल्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना के ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीकटक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु के तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किसी म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया, यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फेरिस्ताइट में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथवा तैंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस्ट लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीहरी नीह नीह टक में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरफ तरफ पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी के आवाज़ में बीते लम्हे।

हंटिंग सेशन निघंटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद तुझे आँख में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल्स प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2004 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 43 साल के उम्र में एन दर तक मई तुई के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपन समय पे, यार सेफन शेस्तक तो निगरी सीफन तक जबले खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब के आवाज़ में।

सरज जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है

0: फाउंड हिंस पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से नर्सिफर तक दिल्ली से 5282 फिर सिफर पर आप तार कीजिए। फिल्म प्यार मोहब्बत देवानंद शायरा बानू के साथ इस फिल्म में काम किया आशा एंड पद्माश्री मोहम्मद रफी दोनों की मीठी आवाजों में आप सुनेंगे प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी।
1: चारों तरफ पानी ही पानी मगर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं।
2: भगवान पर भरोसा रखो।
1: मैं नहीं मानती तुम्हारे भगवान को।
2: लेकिन मैं मानता हूँ।
1: मुझे क्या, मैं तो आपसे आपके भगवान से और जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। इस तरह तड़प तड़प कर जिंदा रहने से तो अच्छा है कि डूब कर मर जाओ।
3: ये क्या कर रही हो?
1: छोड़ दो मुझे, मरने से छोड़ दो।

सुना है सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भगवान एक बार जरूर कबूल करते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, जिंदगी दी है तो जिंदा रहने का अधिकार भी दूं।

प्यार मोहब्बत का टाइटल सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना दोस्तों, शाहरुख खान। शाहरुख ने काम किया प्रीति सिंटा के साथ और फिल्म वीर सारा। आप जानते हैं, आपको मालूम है कि शाहरुख खान बॉलीवुड का सबसे धनी एक्टर है। सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा डॉलर्स शाहरुख खान के है। और साथ ही साथ शाहरुख खान को त्रिनिदाद टोबैगो में वहाँ पर एक क्रिकेट टीम है। शाहरुख खान फिल्म एक्टर से बने से पहले ये एक स्पोर्ट्समैन था और क्रिकेट में बहुत भाग लेते हैं और हमेशा ये पोडियम पे बैठता रहता है। इसका इंडिया में भी क्रिकेट क्लब है। तो शाहरुख और सिंटा दोनों का फिल्म वीर सारा का सॉन्ग आप सुनेंगे।

यहां हूं। अब की बार दोस्तों फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण का सॉन्ग मैं पेश करूंगा। आप जानते हैं उन दिनों में बीते हुए दिनों की बात है, यारन सीफन तक के जब ये फिल्म रिलीज हुआ सुनाम देश में तो हड़ताल मचाया। फुल हाउस से फिल्म लगभग 2 या 3 हफ्ते लगातार पेश किया गया सुनाम देश में और देवानंद मुमताज के साथ इस फिल्म में काम किया। देवानंद दोस्तों आज जब सितंबर के 24 तारीख है तो 26 तारीख 20 सितंबर को इनका जन्मदिन, जो जीवित रहते तो अपन जन्मदिन मनाते, नीरी द्रीन 20 सितंबर नीरी द्रीन 20 में ये पैदा हुआ और मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 2011 लंदन के एक हॉस्पिटल में। देवानंद का असली नाम था धर्म देव और मुमताज के साथ इस फिल्म में काम किया। मुमताज दोस्तों जिनका बेटी का शादी हुआ है फिरोज खान का बेटा के साथ, तो दोनों के फिल्म का सॉन्ग है हरे रामा हरे कृष्णा का, कांची रे कांची हे कांची।

बार आते जाते खूबसूरत सड़कों पे कई लोग मिल जाता है। क्या बात है, जितना भी दूर जाओ घर का रास्ता जरूर मिलेगा, जितना भी दूर जाओ घर का रास्ता जरूर मिलेगा। हे राही चला चल तू मत डर।

इसमें कुछ लोग याद रह जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। वास्तव में दोस्तों ये हमेशा होता रहता है। सड़क पे कई लोग चलते हैं और कभी कभी किसी को देख लेते तो सोचते हैं आदमी को मैं कहीं जानता हूँ, जान पहचान घट लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। पंछी सुर में गाता है

जैसे हो मेरी दिल रुबा। दोस्तों मनोज कुमार ने काम किया फिल्म अनीता में साधना के साथ, और इस फिल्म का एक गीत है, गोरे गोरे चांद से मुख पर काले काले आंखें है। मनोज कुमार का असली नाम हरि किशन था या है, और जब फिल्म में आया तो उनका नाम पड़ गया मनोज कुमार। अबोटाबाद पाकिस्तान में फिल्म दर्तक में इनका पैदाइश हुआ। हम सब मिलकर सुनेंगे माइटी मुकेश की आवाज में ये गीत।

ये काले काले आंखे के बाद तू चीज है बड़ी मस्त मस्त, उदित नारायण एंड कविता कृष्णा मूर्ति। दोस्तों उदित नारायण बहुत से डुएट गाया है, लेकिन अलका याग्निक के साथ ज्यादा से ज्यादा गीत गाया है। फिर भी कविता कृष्णा मूर्ति के साथ आप सुनेंगे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।

जो खो गया, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते।

तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। दोस्तों गाता रहे मेरे दिल तू ही मेरी मंजिल। फिल्म गाइड, गाइड का मतलब है हिट्स। देवानंद इस फिल्म में एक हिट्स था और फिल्म का नाम भी इसी तरह रखा गया, गाइड। हसीनों का पुजारी किशोर कुमार एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों की मीठी आवाजों में आप सुनेंगे।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज किले इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है VVV.FM.NL पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखूं तो एक मिनट व्यतीत हो चला है 12:01 और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है दनहाग शहर से। जो बीमार है लाचार है तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनकी घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। इससे पहले भैया राजन द्वारका अपना कार्यक्रम पेश किए, भैया राजन द्वारका जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और साथ ही साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर के तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं के जरिए तरफ से भैया राजन द्वारका को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। भैया राजन द्वारका आपको एक शुभ शाम। दोंदरा 3 सितंबर, जी हाँ 10 तारीख सितंबर हो गया, गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार है। आप तत्पर है जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जहाँ जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा, शाम होगी, रात होगा, बहरहाल आप सबका हृदय से स्वागत है। जो भी कर रहे होंगे एक शुभ दिन, शुभ शाम या ये शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा नीदरलैंड दनहाग शहर से। यहाँ का मौसम तो बहुत प्यारा है, जहाँ तक मेरा ख्याल कोई 20-21 ग्राद होगा। आते समय हमने नहीं देखे, बहरहाल आप कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, 35 ग्राद में 40 ग्राद में और कहीं पता नहीं कौन सा पोल में होंगे, तो वहाँ तो मेन होगा। बहरहाल जहाँ भी आप होंगे आपका हृदय से स्वागत है। तो शाम के कार्यक्रम है, जी हाँ शाम के कार्यक्रम है और हम चलाने वाले हैं अच्छे अच्छे नंबर, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ देंगे और कार्यक्रम सुनेंगे।

तो लीजिए पहला सिलेक्शन हम चला रहे हैं, इस तरह से हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत फिल्म शिकारी में से निकालकर। निगत इंद्रिय शास्त्र को 1963 का यह गीत है, रफी साहब और लता जी मिलके आपको सुना रहे हैं।

फिल्म शिकारी में से निकाले हैं चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। लता जी के साथ निकित इंद्रिय शस्त्र का ये फिल्म है जहाँ तक मेरा ख्याल है। म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ म्यूजिक डायरेक्टर खे एस कोहली, लिखा नहीं इसी मुझे याद करना पड़ा, खे एस कोहली के साज पर ये शानदार गीत हमने पेश किए हो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, तो आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, लता जी के साथ फिल्म ससुराल में से निकाल कर। जब ये फिल्म पहली बार चला सूरीनाम में, बहुत दिन की बात है, तो लोगों डर गए थे कि क्या ससुराल में ऐसा भी होता है, तो कैसा होता है सुन लीजिए।

अपनी उल्फत के जमाने का न पहरा होता। शंकर जय किशन के साथ ये गीत पेश हुआ ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी तत्पर है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितने बार रोका जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि महबूब नहीं सुनता या महबूबा नहीं सुनती है। बहरहाल आपको सुनाते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है। ये गीत हमने चलाया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, ये सुदास और लता जी आपको सुनाए। चलिए जो गीत हम चलाने वाले थे इससे पहले वही गीत हम फिर ढूंढ के और निकाले हैं और आपको अभी अब सुना रहे हैं। रफ़ी साहब आशा जी की आवाज़ में, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, वह क्या बात है। मेरा सनम नहीं खतीन फाइव इन सस्त ओपन नैयर के सास पर

रफ़ी साहब और आयशा जी मिल के आपको सुनाएं ये गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करें इस तरह से, तो पेश करें मदन मोहन, मदन मोहन के साज पर निगति एन सैफन तक का यह गीत एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुन लीजिएगा इस तरह से। सोचिए मदन मोहन और ऐसा गीत, जी हाँ ये भी हो सकता है।

हो। सिमटी सी शर्माए सी आपको सुनाया गया। हमने ये गीत पेश की मदन मोहन के साज पर निकती एन सेवंत का ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है आशा जी की। आशा जी की ये गीत आप सुनिए। उस जमाने में जब ये गीत बना तो उस जमाने में लोग कहते थे मुजरा है, मुजरा, मुजरा से बदल कर बार का गाना हो गया, बार का गाना कैबरे हो गया, कैबरे के बाद आजकल आइटम सॉन्ग हो गया, नाम बदल गया, गाना वही रहा, लय वही रही और हाँ थोड़ी बहुत साज बदल गया और शब्द बदल गई, लेकिन आजकल क्या कहा जा रहा है, आइटम सॉन्ग। उस जमाने में मुजरा कहा जाता था। चलो सुनते हैं।

आशा जी, वाह क्या बात है आशा जी, आपको सुनाए हैं ये उन दिनों के गाने जो हम आप सुन रहे थे और इस पर डांस भी किए होंगे, लुत्फ उठाए होंगे हमने पेश की आशा जी की आवाज़ में। तो चलिए, पक्का मुजरा ये है जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ, तो ये पक्का मुजरा है।

वाह क्या बात है, हमार कहाँ मानो राजा जी फिल्म है का नाम है दुल्हन एक रात की, ये भी है लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये फिल्म हमने नहीं देखे है। आपने देखे होंगे तो बता सकते हैं हमने फिल्म नहीं देखे। अगर गाना तो सुने हैं और भी गाने हैं जहाँ तक मेरा ख्याल में, एक दिन ये फिल्म लेकर देखेंगे। उषा मंगेशकर और आशा भोसले दो बहनें मिलके आपको सुनाई है ये मुजरा वाला गीत। तो वही मुजरा और वही कैबरे डांस और वही वगैरह वगैरह नाम बदलते बदलते बदलते बदलते अब हो गया है आइटम सॉन्ग।

0: रावण से उसकी लंका ही मांग ली।
1: वो भी होता है रावण से लंका मांगना। बहरहाल ये आइटम सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं। चलिए इसी समय का आइटम सॉन्ग हम आपको एक और सुनाते हैं, और वो ये है।

घर मेरे परदेसिया आओ पधारो, पेश परदेसिया फिल्म कलंक में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए। ये था भी एक आइटम सॉन्ग। जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ी सी देर, थोड़ी सी समय और है तो हम आपको एक और आइटम सॉन्ग सुनाते हैं। जी नहीं, आइटम सॉन्ग से पहले सुन लीजिए मुजरा। चलिए हम आपको मुजरा सुनाते हैं। उससे पहले आइटम सॉन्ग था ये और अगला गीत है एक मुजरा। चलो सुनते हैं।

0: वह आशा जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये मुजरा उन दिनों का। चलिए घड़ी पे देखूं तो जी हाँ घड़ी पे देखूं तो इस वक्त 4 मिनट बाकी है 1 बजने में। चलिए यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, और विज्ञापन के बाद हो सकता है शायद थोड़ी सी और ये कैबरे मुजरा और इसका सिलसिला मैं आगे जारी करूं, लेकिन उससे पहले चलो सुनते हैं विज्ञापन। विज्ञापन के बाद न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूं। बस मैं यूं गया और यूं आया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418-8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen

धूम मचा ले धूम, सुनिधि चौहान और साथी मिलके आपको सुनाए हैं ये गीत हमने चलाए। ये भी एक आइटम सॉन्ग है। चलिए एक आखिरी आइटम सॉन्ग आपको और सुनाएंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम थोड़ा बदलेंगे। लीजिए ये आइटम सॉन्ग, क्या ख्याल है?

अहर गैर नत्तो खैर, ये गीत हम आपको सुनाए हैं और फिल्म कलंक में से निकाल के हमने पेश की प्रीतम के साज पर। जी हाँ, तो चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, अब थोड़ी बदलते हैं और बदल कैसे कैसे बदलते हैं इस तरह से, चलो माइती मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस इस तरह से।

मधुमति में से शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश किए ये गीत और आपने सुने। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

अभी न फेरो नज़र, ये गीत हम आपको सुनाए हैं और वो फरफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत ये है, जी हाँ,

लता जी आपको सुनाएं अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयां में से है नई गिनती इन्फ्रेंसी शस्त्र का जी आनी की थी फिर शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं एक फिल्म है फिल्म शायद आपने देखे होंगे बहुत पुरानी फिल्म है ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है स्वार्थवेद फिल्म है शायद आपने देखे होंगे नाम है जग्गा डाकू जिसमें जयराज ने खेले हैं एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है एक्ट्रेस नाम नहीं है क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ इस तरह से आ रहा है

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन, जी हाँ मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेड क्विंसेस 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे, जी हाँ फिल्म गुलामी में से निकाल कर। ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

0: कहां से।
1: वाह क्या ड्यूएट था रफी साहब और आशा जी की आवाज़ में, फिल्म कश्मीर के कलिमे से निकाल कर हमने पेश की ओपन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है। जी हाँ रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में, फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, हमने कहा ना मैं कौन कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं। मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिता सेन शस्त्र का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी की आवाज़ में ये धमाकेदार गीत।

हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकेदार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकेदार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए। गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है, जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकटिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली, निकने से का ये गीत। हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है। 454 तक फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

0: रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निगेति निघ्न से अस्तक का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब के आवाज़ में। रेशम की डोरी, इसका सारे भी बनता है। जी हाँ, रेशमी शायद सारी। चलिए चलिए, अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है। हाँ जी, फिल्म ब्लफ मास्टर। ब्लफ मास्टर में से निखती इंद्रिय शस्त्र 1963 का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साज पर। क्या ख्याल है?
1: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।

फिल्म ब्लूथ मास्टर में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए हैं शाम के कार्यक्रम में। करीबन 3 मिनट बाकी है, 2:30 बजने में यानी 3 मिनट इन फोर ऑल ऑफ दी मैं रहूँगा 3 बजे तक। 3 बजे के बाद हमारे सहयोगी मिलके आपके सेवा में रहेंगे, लेकिन उससे पहले क्या ख्याल है?

रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म यकीन में से निकाल कर हमने पेश की। तो चलिए, क्या ख्याल है अब ये आपको सुनाया जाए? बारिश तो नहीं हुई लेकिन फिर भी गाना में सब चलता है।

भीगी भीगी वादी में ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो क्या ख्याल है, ये भी सुन लीजिए लता जी की।

हाँ जी कोई शक, शबीर कुमार और लता जी मिलके ये शानदार ये फिल्म गुलामी में से आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो।
1: बेशक।
0: अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
2: ये क्या कह रहे सागर?

0: Dit is Liesbeth, cashière bij Jumbo.
1: Wah, kya baat hai. Asha ji aur Bhupinder. Asha ji aur Bhupinder milke ye geet aapko sunaye. चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है हाँ दिल विल प्यार व्यार। वाह क्या बात है।

किसी से मुझे प्यार हो, ये शानदार गीत आपको सुनाया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। देखते हैं घड़ी पर, करीबन 6 मिनट बाकी 3 बजने में। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद सभी सहयोगी मिलकर आपके सेवा में रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला रविवार को, यानी सोमवार को, आने वाला रविवार सोमवार को गीत गज़ल कार्यक्रम में 8 से 10 बजे रात्रि तक। और मेरे बाद कार्यक्रम आप सुनते रहना फौन हिंदुस्तानी रेडियो को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, सभी को नमस्कार।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बांध से बड़ी बांध हो जाते हैं, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बांध वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बांध है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: बिना जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

और ये सब गीत से, और ये सब गीत से आदमी लोग के गर्मी लग जाता है। प्यार के गीत है और प्यार के मूड में आज हैं, तो हम और अगला गीत की ओर जाते हैं। और वो है, जब किसी को आप प्यार करते हैं तो आपको क्या दिखना, क्या दिखते हैं आपकी आंखों के आगे, आपके नज़र के आगे क्या आ जाते हैं? जब अगर सचमुच किसी को प्यार जे आप करते हो तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

और दोस्तों आज आप लोग को हम ओनली लवली सॉन्ग्स सुनाएंगे। हम चलते हैं जग घुमाए गब घुमाए की ओर, हम चलते हैं एक प्यार भरी लवली सॉन्ग राहत फतेह अली खान।

0: और जग घूमता जैसा तुम्हारा। और क्या क्या है दोस्तों, तो हम आची फिर से और प्यार के मूड में है, चलते हैं तेरी मेरी क्या है, चला जाए।
1: शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

0: हरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो तो कैसे होगा हमारे यारो। और दोस्तों तो एक गीत हम और आप लोग को, ये है प्यार भरी नगमों की बहार प्रोग्राम ख्वाबों का तू है और क्या।
1: राहों में लम्हे रुक जाए ऐसे ही टूट के दिल तुझको चाहे, फिर से उन यादों के पुर्जे उड़ा रहा हूँ फिर से तेरा रह गुजर।

तू है रे गुजर रे तो दोस्तों हम प्यार के मूड में आज हम हैं ते है तो यारो हम चलते हैं एक गीत की ओर।

तो मेरा एक सपना है, क्या आपके भी सपना होगा? तो जो सपना है तो कभी कभी पूरा हो जाता है और कभी कभी और बहुत अफसोस है कि नहीं पूरा होता है। मरे एक छोटू के लिए है।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना दराई करे कि हम में भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो
2: तुमने क्या जवाब दिया?

0: सुनने वालों नमस्कार, ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और हमारे आज कार्यक्रम में सहयोग दे रहे श्रीमती केर लिंदा जी और अनास्तासिया जी। एक कार्यक्रम जो हॉलैंड में होने वाले है, जिसमें स्पिरिचुअल के अंतर्गत में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, और सदगुरु जी जो फ्रेंच यानी कि फ्रांकरेक से यहाँ आने वाले हैं, तो हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं अनास्तासिया जी। अनास्तासिया जी, आप जो कहते हैं हम सबको कि हम गोरे लोग, और कैसे आप हिंदी कितना अच्छे से बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: धन्यवाद।
0: बड़ा धीरे से आपने कहे कि धन्यवाद, कहने के तात्पर्य यह है। दोस्तों सुनने वालों, अनास्तासिया जी कुछ सालों जो भारत में रहे हैं और भारत में रह करके अपना भाषा हिंदी खूब अच्छी तरीका से बात कर लेते हैं और उसमें मराठी भी बात कर लेते हैं। तो अनास्तासिया जी, पहले अपने बारे में हम सबको सुनाइए कुछ।
1: हाँ, तो मैं जब 4 वर्ष की थी तो मेरे पिताजी और माताजी एक आश्रम में, गोवा में स्थित एक आश्रम में रहने के लिए गए थे, और मैं 4 वर्ष की थी तो तब से वहाँ 15 साल रहती थी आश्रम में, गोवा में। मैं स्कूल में जाती थी वहाँ गोवा में, और वहाँ से मैंने मराठी हिंदी दोनों सीखा। मुझे भी गोवन लैंग्वेज कोंकणी भी थोड़ी आती है। मैं जन्म से साधना में साधना कर रही हूँ। मेरे पिताजी माताजी मेरे जन्मे के पहले साधना करने का शुरुआत किया था, और मैं साधना में बड़ी हो गई, और मैं छोटीपन से भगवान पर बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत प्यारा है, और मैं उनके साथ बहुत बात करती हूँ। तो ये मेरे बदल थोड़ा थोड़ा है।
0: अनास्तासिया जी, आपने अति सुंदर रूप से ये संदेश को रखे कि भगवान से प्रेम करना कैसे होता है, और इसी अंतर्गत में और जो जाकर के सद्गुरु जी हमारे देश हॉलैंड में आने वाले हैं, कार्यक्रम जो होने वाला है सेवाधाम में मंदिर में, हम सब अभी सुनने वालों जरूर उसके बारे में बात करेंगे कि कई बजे और कब और कहां पर कार्यक्रम को रखा जाएगा। पर अनास्तासिया जी, हमें थोड़ा से संदेश दीजिए कि सद्गुरु जी जो अपने बचपन जो फ्रेंच में जिनका जन्म हुआ तक में, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उनके जब बायोग्राफी जब देखा जाए कि बचपन से उन्हें कुछ था भगवान के रुचि, थोड़ा से उसका और संदेश हम सबको लिए रख दीजिए।
1: हाँ, तो बचपन से मेरे पिताजी को भगवान में बहुत विश्वास था, लेकिन हमारे माता पिता, उनके माता पिता भगवान में बहुत विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मेरे मेरे पिता के माता वो जीसस पर बहुत प्रेम करते थे, और वे पिताजी को भगवान के बारे में बहुत सुनाई देते थे। फिर पिताजी बड़े होते होते एक सुपर मॉडल बन गए, और सुपर मॉडल में वो काम करते थे, और फिर जापान में गए, जाकर उनको मेरे माताजी से मिलना हुआ। मेरे माताजी तब साधना में शुरू उन्होंने किया था, और फिर माताजी ने बाबा को, सदगुरु को साधना में उनके बारे में सब बताया, और फिर तब से पिताजी को ऐसे लगा कि अब मुझ मेरा जो सर्च था, या उनको बहुत ऐसे लगा लगता था छोटेपन में कि मुझे कुछ तो चाहिए, और फिर बाद में उनको लगा कि अब मैंने ढूंढा जो मुझे चाहिए था। और फिर वे साधना करते करते, जैसे मैंने बताया, जब मैं 4 वर्ष की थी तो हम आश्रम में गए थे, अभी मैं 22 इयर्स की हूँ, वहाँ साधना करते करते वे ऐसे सारे नाम का एक, जैसे गोवा में सनातन संस्था ऐसे नाम का ये है, ऐसे सारे एक ब्रांच है उससे। तो मेरे पिताजी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उनने SSRF को सब संभालने का। और SSRF क्या है, वो सनातन साधना के तरह, लेकिन सब बाहर के लोगों के लिए, लाइक इंडिया में भी साधक आ सकते हैं SSRF में, लेकिन अब्रॉड ऐसे सब विदेशी लोग ऐसे जो साधना कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी में थोड़ा अलग है इंडिया के तरफ। तो पिताजी ने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको सबको साधना कैसे अच्छे से कर सकते हैं ऐसे सब सिखा रहे थे, नाम जप कैसे करना, भगवान को कैसे बुलाना, हमारे जो दोष है वो, हमारे जो बेस जेलसी ऐसे सब जो दोष है हमारे में, तो वो कैसे निकाल कर गुणों को अंदर लाने के लिए ऐसे सब कैसे, तो फिर दूसरों लोगों को भी साधने बारे में कैसे बुलाना, कैसे बताना, कैसे उनको वो जो माया है उससे बाहर निकालने का, उनको चैतन्य पॉजिटिविटी ऐसे सब लाने के लिए कैसे साधना कर सकते हैं, नाम जप, दोष निर्मूलन, ऐसे सब छोटे छोटे जो है वो कैसे सब अच्छे से करने का, और भगवान के चरणों में कैसे जा सकते हैं, ऐसे सब वो सब विदेशी साधकों को सब लोगों को सिखा रहे थे। और वो करते करते हमारे जो गुरु है इंडिया में, उनके गाइडेंस और उनके मार्ग से मेरे पिताजी 2018 में सदगुरु तक पर पहुंचे, और अभी हम एक जर्मनी आश्रम कर रहे हैं। तो 2021 में हमारे गुरु ने बोला कि जर्मनी में हम आश्रम बनाएंगे, तो पिताजी को पूरे जर्मनी को फिर कर उनको बोला कि आप एक आश्रम ढूंढो। तो 2 वर्ष मेरे पिताजी पूरे जर्मनी आश्रम ढूंढने के लिए उन्हें प्रवास किया, और फिर 2022 में हमको आश्रम मिला, एक जर्मनी आश्रम अलरोडे में। तो अभी मेरे पिताजी उनके रेनोवेशंस और साधकों को साधने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं आश्रम में, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ ले रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे पिताजी के बारे में है।
0: बहुत अच्छा रूप से आपने ये संदेश को रखे कि देखा जाए कि आपका, यानी कि सद्गुरु जी जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने सिर से लेकर के हम सब के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं हमने जीना सीख लिया, पर जीना असलियत में जहाँ पर आनंद को प्राप्त कर सके तो साधना, और कैसे साधना होगा, इस अंतर्गत में सद्गुरु जी जो हॉलैंड देश सेवाधाम में आने वाले हैं। अनस्तासिया जी, मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि सेवाधाम में जैसे कि हमने सुने हैं कि 17 को आप लोग फ्रेंच से छूटने वाले हैं और 18 को आप लोग नेदरलैंड्स यानी कि डेन हाग में पहुंच जाएंगे, तो कई बजे और कहां पर ये कार्यक्रम रखा जा रहा है?
1: तो 19 सितंबर को हिंदू सेंटर सेवा धाम इस जगह एक प्रोग्राम चलेगा।
0: सेवाधाम जो डेन हाग शहर में है अल्बर्टाइन प्लेन पे, और वहां पर ये कार्यक्रम चलेगा 19 सितंबर को।
1: हाँ, वो एक दिन और दूसरा दिन भी 20 सितंबर, दो दिनों में वो प्रोग्राम होगा।
0: और अनस्तासिया जी, जब देखा जाए कि 19 सितंबर शनिवार होता है, तो कितने बजे से कितने बजे तक कई सेशंस रखा जाएगा, इसके बारे में हम सबको जरूर बताइए।
1: हाँ, तो पहला सेशन 10 o'clock इस बजे होगा,
0: 10 बजे सुबह में।
1: हाँ, 10 बजे सुबह में शुरू होगा। मैं मेरे पिताजी को हिंदी में इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर गणेश श्लोक बताऊंगी और फिर बाद में पिताजी श्री राम नाम जप का एक मेडिटेशन सेशन लेंगे। उसके बाद हम मेरे पिताजी एक्सप्लेन करेंगे कि नाम जप कैसे चलता है और कैसे हमको लाभ मिलता है नाम जप करते, और किसी को भी प्रश्न या ऐसे कुछ पूछना है तो इस टाइम में भी पूछे सकते हैं।
0: और देखा जाए ट्रांसलेट करने वाले यानी कि अनस्तासिया जी जो रहेगा, और हर रविवार को वहाँ हम लोग सेवाधाम में मंदिर भी लगाते हैं जो कि दिन में 2 बजे से शुरू होता है 6 बजे तक, और इसमें कार्यक्रम रविवार का कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक है?
1: रविवार का कार्यक्रम 10 से 12 बजे
0: तक। तो दोस्तों सुनने वालों, आपने सुने हैं कि हमारे देश में और हम सब को और संदेश देने के लिए सद्गुरु जी जिन्होंने बहुत से तपस्या किया है, बहुत सा और फ्रंट वार्डिंग भी पाए हैं और जा करके हमारे साधना के लिए स्पिरिचुअल के लिए कैसे किस प्रकार से हम सब उस पे और ध्यान दे सकते हैं, और इस प्रकार से जो यहाँ डेन हाग में कार्यक्रम होने वाला है। और अनस्तासिया जी, हम सब के जो अभी और भी संदेश सुनाने वाले हैं, कहने के तात्पर्य यह है कि हम अपने पितरों के बारे में क्या कर सकते हैं। अनस्तासिया जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और सद्गुरु जी हम सबको क्या संदेश सुनाने वाले, क्या हम सबको अभी से कुछ आप सुना सकते हो?
1: हाँ, तो अब थोड़े दिनों में पितृपक्ष आने वाला है। तो पितृपक्ष क्या होता है? जब पितृदोष हमारे ऐसे बहुत लेवल्स होते हैं, तो पाताल होता है, फिर भूमि, फिर भूमि तत्व, फिर ऐसे दूसरे लेवल्स होते हैं भगवान तक। तो ये पितृपक्ष क्या होता है? जब पितृदोष हमारे तो रीजन होता है, वहां वे नीचे ऊपर से नीचे आते हैं और उनका हमारे पर इफेक्ट और होता है। तो उन दिनों में हम कैसे पितृदोषों को के जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं उनसे कैसे हम सेफ रख सकते हैं, तो हम कैसे सेफ रख सकते हैं हमको? तो एक होता है नाम जप करने का, श्री दत्तात्रेय का। तो दत्त श्री दत्त जी पितृदोषों को यहाँ से भगवान तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इनका वो भगवान होता है। तो उन पितृपक्ष के समय रोज दत्त जी का नाम जप कर किया तो हमको पितृदोषों से कुछ होता नहीं।
0: बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं अनस्ताशिया जी, हम सब यहाँ पर कभी कभी लोग अपने मुसीबतों को लेकर के और हम कहीं मंदिर में या कहीं मुसीबत के जहाँ पर पहुँच जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता है और हल नहीं मिलता है, और जबकि हमारे अपने हमारे पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इस पे जो हम ध्यान दे तो हम उससे कितना बच सकते हैं ना। हम देख रहे हैं हमारे सद्गुरु जी भी कुछ शायद हम लोग के साथ और बातने वाले हैं, तो हो सके तो सद्गुरु जी से और हो पाए तो हम सबको सुना दे। सद्गुरु जी को भी नमन करते हुए अगर हो सके तो आप थोड़ा से कुछ संदेश सद्गुरु जी से हम सबके लिए यहाँ के रेडियो के वास्ते कुछ सुना सकते हैं?
1: हाँ, तो ये मेरे पिताजी हैं सद्गुरु सिरियाक वाले, वे अभी हॉलैंड में आएंगे प्रसार करने के लिए। उन हम सबको नाम जप और साधना के बारे में बताने के लिए अभी पिताजी थोड़ा एक छोटा मैसेज बताएंगे साधने के बारे में।
2: नमस्कार संजय, I live in India for almost 12 years. Come to India for more than 25 years now, since 1999, and live in ashram to practice the beauty and knowledge of Sanatan Dharma and India. And this for us is not making this knowledge available for people in the West. Because the importance of sadhana, spiritual practice, because even many Hindus who live abroad, even though they have learned all this sanskar of shastra, of the science of spirituality, they actually are not practicing it, or they don't know all the knowledge also. So I think this is also why we are traveling in caravan, speaking in temples to share the knowledge. Because people from India, or who have born in India, or grow up, or born also outside India, they have that understanding, that knowledge, but they don't know sometimes the why and how to put it into practice. So this is in a way what we will be sharing also in the temple. And this is a different lecture also. I'm traveling across the world and as we're doing lecture in different temple also. And they understand immediately the knowledge, like we will be speaking about Pitru Dosh, about this concept of departed ancestor. By God's grace, you all know this knowledge. And the West people, we have to start from scratch, from zero, because they have no concept of the concept of Pitru Dosh. And sometimes the solution is very simple, but we have to do it into practice. It's not only rituals, of course there is rituals, but there's chanting also. Chanting like what we call Nam Jap or Namasmaran of Sri Gurudev Datta. Myself, that was my biggest anubhuti, spiritual experience, before I went to India, because whatever I was experiencing, didn't know. And I was smoking, I was in 3 days when I started chanting Sri Gurudev Datta. I stopped smoking within 3 days.
0: So there is a lot of things, so you can, by chanting, you can progress in your life.
2: Of course, not only you make progress, but you also give momentum to your departed ancestors. That's what people don't know. You free also your ancestor who are in a way in Vuva Lok or the different Lok, to be able to move on and get reborn. So not only your problem can be alleviated, and at the same time you give them that momentum. So that's why also there is this ritual, puja or ritual that can be done. But puja or ritual has limitation. There are few places in India where this special ritual is done for ancestor. But the chanting namja, it is in our hand. And it is something we can do. And that is the power of Sri Gurudev Dutta. We have even published on our website. That's why we have a website called ssrf.org. And we have published more than 900 articles of all the knowledge from actually based on Hinduism. And of course, the science of spirituality. And we explained a lot about this concept of Pritu Dosh. And so many testimony we have from people across the world and religion, they were able to overcome many problems, addictions, depression, insomnia, the different that because the root cause in today's time, often the problem that people see is that it is addressed at the physical level or psychological level. But sometimes the root cause may be actually spiritual in nature, and people don't know. All the modern science is not taking that into consideration, except of course in India, where that knowledge of Pritu Dosh is known, but not all known in all India.
0: We are very happy that Sadhguruji is visiting Holland at Den Haag Sewadham. So I'm very glad to meet Sadhguru, and so I think also everyone that are tuned now at Fahon Hindustani Radio shall be at Sewadham at 19 September. There are sessions 19 September and also sessions Sunday 20 September. So I cannot wait to see you, Sadhguruji. Namaskar.
2: Namaskar and see you in a few days.
0: नमस्कार अनस्ताशिया जी आपको भी नमस्कार कर कहते हूँ और ये कहना चाहूँगा कि आप मराठी में नमस्कार कर देना प्लीज
1: हाँ ठीक है नमस्कार माझे नाव अनस्ताशिया मी सगळ्यांना माझा भावपूर्ण नमस्कार सांगते आणि आम्ही तुम्हाला हॉलंड मध्ये भेटू नमस्कार
0: धन्यवाद सुनने वालों हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये संदेश जरूर आप सुन करके इस पे ध्यान देना क्योंकि ये कार्यक्रम एक भी सुंदर कार्यक्रम होते होने वाला है जो स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत में सेवाधाम मंदिर से और रखा जा रहा है सातरदाख नई खंतीन सितंबर को 10 बजे सुबह से कार्यक्रम होने वाले हैं और उसके बाद में रविवार को जो 10 बजे सुबह से भी कार्यक्रम सेवाधाम मंदिर में होने वाला है नमस्कार आप सब

0: नालो मुझे बलमा, और ये सुंदर सा आवाज आप सुने सत्या त्रिबेनी चैतू के आवाज में। हम एक दूसरा सॉन्ग जो सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तो बस चैतू लिखा था, तो यहाँ हमारे सम्राट, म्यूजिक सम्राट जो कहा जाता है सूरीनाम का, श्री रामदेव चैतू जी के आवाज़ में हम एक गीत को चलाने का ये आशा रखता हूँ।
1: रही हैं सूरीनाम का सभी मशहूर टॉपर्स, और ये खास टॉपर का प्रोग्राम जो मैंने कहा शुरू है एक खास मशहूर गाने वाले से। ये शख्स माइक्रोफोन आने से पहले ये भी कहना मैं मुनाफी समझता हूँ कि यहाँ देखो वहां देखो या रात की सपना देखो, यहां सुनो या वहां सुनो, हर एक महफिल में रौनक ही रौनक है। ट्रिनिडैड, हॉलैंड और सूरीनाम में गूंजता है वही मशहूर तोपर जिसका नाम है उस्ताद रामदेव चैतू।
0: रशीद पीर खान रापर का
2: रोज देखिला, रोज देखिला तो है सपना।

सुनो वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और कार्यक्रम जो यहाँ 2400 घंटा आपके घर तक, आप कहाँ भी हो, इंटरनेट द्वारा 188 देशों तक सुना जा सकता है। और अभी हम अपने मित्र श्रीमान जो लोंडवा का नाच करते रहते हैं, एक जो हमारे परंपरा से जब से हम लोग 150 साल पहले से सूरीनाम को गए, वहाँ पर जो हमारा विवाह संस्कार में और दुल्हा के नाच लेकर जाते थे और जा रहे हैं और आगे में भी जाते रहेंगे, उसके बारे में भाई राधे जी जो दुल्हा के नाच का और एक मशहूर कलाकार है, उससे अभी हम बात करने वाले हैं। पहले हम एक और गीत चलाते हैं श्रीमती सत्या त्रिवेणी चैतू के आवाज़ में।

0: पार्वती जो सत्या कहते हैं कि चैतु सत्या जी जो अपने आवाज़ से और ये सुंदर सा गीत को हम सबको चुला सुनाइए। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं भाई राधे जी से और संपर्क करने को और राधे भाई को देखते हैं कि उनसे कैसे टेलीफोन द्वारा हम आउटस्टैंडिंग में ला सकते हैं। भाई राधे जी नमस्कार।
1: नमस्कार हो, नमस्कार, कैसे हो आप?
0: बस कहते हैं कि दाल चावल चल रहा है, मौसम ठीक ठाक है और सबसे उम्दा बात यह है कि स्वस्थ अभी साथ दे रहा है तो चल रहा है, कैसे कहूंगे।
1: हाँ भाई, जब तलक सांस है ना तब तलक तुम्हारे पास बहुत मोहलक है थे अपने जीवन के परिवर्तन में लावे खातिर,
0: और
1: आखिरी सांस तलक तुमको है राम नाम जपने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हो भाई राधे जी। और एक क्योंकि आप सुंदर सुंदर गीतों के साथ हम सबके साथ हरदम पठाते रहते हैं तो हमने सोचा क्यों ना अभी एक सुंदर सा गीत जो आपसे हरदम हम लोग पाते रहते हैं अभी चलाया जाए। पर ये बताइए कि आजकल अब सीजन शादी के हो निकला है, भीड़ भाड़ कैसे है?
1: बहुत भीड़ भाड़ है भैया, जवानी के नशा सब पर चढ़ल है और फुल टाइम ब्याह हुआ है, चाहे गरम चाहे नरम, चाहे बरसात चाहे फैफन दर तखराद बकी उतने फैन विवाह संस्कार हो रहा है।
0: ये तो बहुत उम्दा बात है कि हमारे अभी हद तक हम लोग जो जिस प्रकार से हम लोग के विवाह संस्कार होत रहा सन्नाम में, अभी तलक उनके और ले करके हमारे संस्कृति सभ्यता और समाज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जरूर कुछ छोटा मोटा चीज तो फरांदर करे पर या है, पर इसमें देखा जाए कि जो सबसे मूल्य बात है ना दुल्हा के नाच वाला, कोई विवाह अपना तय करे तब सबसे पहले वो भी तैयार करना पड़ता है ना भाई।
1: सही बात है भैया, देखो मनोरंजन चाहिए, अब का है कि विवाह संस्कार 16 संस्कार में एक संस्कार भी है विवाह संस्कार न, और जो दुल्हा है दुल्हन है धरले दसोंस खेंत बखेंत स्खेन उब्दी दखफुरहन, कारण कि अब वो दोनों गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं ना, और गृहस्थ आश्रम में जो दोनों बहुत शांति और आनंद में रहे तो स्वर्ग समान है, और जहाँ तू तू मैं मैं कर ले तो नरक हो जाए। तो बहुत समाज के ये दुल्हा दुल्हन अपने के या वोट देवे है आजकल, तो इसे भी चाहिए निभावे के, और फिर लोग बहुत उम्मीद और आशा से ये विवाह संस्कार कर रहे हैं, और माए बाप कितना दिन से पैसा भी टोड़त है, आप सब लोग जानत है कि 5,000-10,000 में विवाह संस्कार ना हुए है, सब मिलाए जुलाई के 5 तक 6 तक 200 यूरो हम सुनी ला हो जा है दोनों कहती के ना, तो बेटा बेटी जोन है सबके वही इसने चाहिए अपन घर गृहस्थी चलावे के, मत मैया बप्पा तोर बहुत परिश्रम करके तुहार विवाह संस्कार करिल है और हम लोग के बलायल है मनोरंजन के वास्ते रिचुअल के खातिर, और जितना अनेक प्रकार के चीज होवे है सब भइल है। अब जैसा आप बोल रहे है कि तनी मनी परिवर्तन है, हाँ भैया समय के धारा है गंगा नदी हर में बहता रहता है, तो कुछ न कुछ देश अनुसार जरूर न जरूर कुछ परिवर्तन हो रहा है और आगे में भी होगा। जैसे 50 बरिस खलीद हुआ था, जैसे सिरनाम में पहले हुआ था, ऐसे ना है। अब जैसे देखियो फिजी में, साउथ अफ्रीका में, त्रिनिदाद में, ग्वादलूप में सभी विवाह संस्कार करत है, मंत्र वही है, लेकिन खबरकर आवेश सिंह जोन है मुताबिक अलग अलग है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि हम अपने राम सीता के फोर बिल्स लेके हम लोग विवाह संस्कार करत है। और जितना गाना बजाना होए है राम के विवाह या शिव विवाह गाथा के, हम लोग उनका नाच करत है और इनमें बहुत मनोरंजन है। और एक छोटो भी है ना, एक छोटो एक कथा है कि हम लोग संगीत के माध्यम में पब्लिक के हम लोग सुनाए ला।
0: राधे भाई, बात भी बड़ा इतना सुंदर बात आपने भी कहा, एक शब्द जिस जो मुझे छू गया कि राम और सीता के तरह विवाह, क्योंकि सब माता पिता यही चाहते हैं ना कि हमारा बेटी और बेटा का विवाह राम और सीता के तरह हो, है ना?
1: सही बात है।
0: और यही
1: दुल्हा दुल्हा जो सपरत है ना, आजकल तो शेरवानी भी चले लगल है, बाकी घर के आगे जो है दंतरा दिचुनेल है, मोर जोड़ा जामा कन्हावर ना, ये सब हमारे उस सजावट में हम लोग कैसे सजाएला ना कि अनपीत क्लास है, बाकी प्रभु राम के मूर्त में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये अब स्टूडियो में अभी तो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश भी आने वाले हैं और शांता जी भी उपस्थित हो गए हैं, पर कहने के तात्पर्य ये बिल्कुल विष्णु जैसा और तैयारियां करना चाहिए। और शायद लगता है कि भाई हाँ चलो वो जोड़ा जामा यानी कि कैसे बोले हैं आजकल के सलवार कमीज ले लेते हैं, पर वो चीज़ उसमें नहीं है जो जो सन्नाम में बनवाया जाता था। कैसे कहते हैं मोर और जोड़ा जामा, शांता जी कहते हैं जोड़ा जामा है, इसमें कुछ और मजा,
1: जोड़ा जामा पगड़ी
0: और जो बहाना जाता था क्रॉस के तरह ना
1: जी।
0: तो बड़ा ये बात मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक हॉलैंड में हुए है ऐसा और सूरीनाम में।
1: सही बात है,
0: पर कोई कोई लोग है शायद उस पे ध्यान नहीं देता होगा तो कहाँ, तो बस विवाह ही हो गया लक्ष्मण क्या कहते हैं राम और सीता के तरह, जैसे सच धज के और सीता का, और जो क्योंकि शादी से पहले लाल नहीं पहनते ना, शादी के रोज ही लाल पहनते लक्ष्मी के तरह।
1: सही बात।
0: और जो अब आजकल तो कोई देखिए ब्लाउ पहन ले से, कोई देखिए ख्राइस पहन ले से, बोले या डिटिस मेन वेंस, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
1: आप दत्त सन ही लखफाल का फ्राक दी स्टाइल ओकर वेन से, लेकिन तो का चाहे तनी बोध रहे के ना कि तू का पहन ले है वंत एल्क क्लोर है तो बपाल द फिबराची ना। और जैसे प्रभु राम सूर्यवंशी था उस दिन से तोर लेफन सोन धरले फॉर योर ट्वे मेस बलंगराई को होफस्तक फाइन लेफ गृहस्थ आश्रम ना, ऊपर तो चाहे उजाला ही उजाला से जाए के। और जब खरे इस वॉकिंग पे तू जाइए तो ओकर प्रणाम तू जा तो के चाहे जाने के का करे है।
0: बड़ा सुंदर रूप से ये संदेश आप बोले समझने वाला भी समझ गए होंगे। तो
1: कभी कभी दुल्हा लोग करिया पजामा पहने, बेटा एक निकाह देने ओम देते स्वात खराख विल, तो का
0: बस तो खराख में जो है। पर इसमें भाई ये अब समय आ गया है न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ने के लिए, तो हम अभी आपसे फिर संपर्क करेंगे, न्यूज और कमर्शियल के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: धन्यवाद।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభా నిర్విధినం కురుమిదేవ సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహి పారహా అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసి న కిసి రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ फाहुन रेडियो का सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज फिर हम सब एक बार स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं और स्टूडियो में साथ में जो हमारा आज साथ दे रहे हैं तो विवान है, विवान जो यंग के लिए कुछ कहेंगे। तो दोस्तों शांता भी स्टूडियो में है और अभी जैसे कि लग रहा है कि विवान ने अभी थोड़ा से नर्वस है और शायद अभी बाद में कुछ कहने वाले हैं, तो शांता जी फिर उसके बाद में फिर राजेंद्र जी और हम सब कार्यक्रम को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेड़ा पार, जो जपता है नाम हनुमान, होते सब दिन एक समान। हाँ सुनने वालों, आपको सेविका शांता की तरफ से एक बार फिर स्वागत कहती हूँ और मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम। और आपको यहाँ से हम स्वागत करते हैं ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी हम फिर उपस्थित हुए हैं स्टूडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ। हमारे जो खोजी दल है,
0: खोजी दल
2: कुछ ना कुछ खोज के लाते थे, इस बार खोज के लाए पंचमुखी हनुमान जी की कथा। तो उसी पंचमुखी हनुमान जी की कथा को सब लोग सुनेंगे और मुझे लगता है कि सबको बड़ी अच्छी लगेगी। और बने रहिए दो घंटे तक हमारे साथ, बीच बीच में बहुत सारे हनुमान जी के भजन और इस प्रकार से अलग से रहेगा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रहने वाला है, आशा करूँगा कि सबको पूर्ण रूप से सब लोग सुने और काफ़ी बड़ा विषय है और सब सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कही दिए है कि आज का विषय पंचमुखी हनुमान, तो शांता जी आपसे जब अगर पूछा जाए कि आपको पता है किस प्रकार कैसे लग रहा है, कैसे वो हम पहचानेंगे पंचमुखी हनुमान?
1: अभी तो उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। और जो हफ्ते हमने सुना पिछले सप्ताह कि आज हमारा पंचमुखी के जानकारी में हमारा प्रोग्राम चलेगा, तो मैं भी बहुत बेचैन हूँ सुनने के लिए, साथ ही साथ हमारे श्रोतागण भी बेचैन है सुनने के लिए। तो हम वैसे सुनते रहेंगे क्या होगा आगे में।
0: तो अभी बारे में अभी हम सब छलांग लगाने वाले हैं, देखते हैं। विवान भी आज हमारे साथ स्टूडियो में है। और विवान, अगर आपसे पूछा जाए कि हु सीट the beeld van Panchmukhi Hanuman, weet jij dat?
3: Nee, dat weet ik nog niet. Ik heb het nog nooit gezien.
0: Nog nooit gezien?
3: Nee.
0: To dosto, aisa kyun na Rajender ji? Kyun na hum pehle jo hamare jo sunne wale hai, jo taiyar ho rahe hai abhi ye karyakram ko sunne ko, jise abhi मन में थोड़ा सा उदास है, क्यों ना हम पहले उनके लिए गीत चला देते हर सप्ताह की तरह, तो फिर हम सब विषय की ओर छलांग लगा लेंगे।
2: हाँ, जरूरी है कि उदासी मन नहीं रहना चाहिए। अगर मन उदासी रहेगा तो इतना इंटरेस्टिंग विषय को कैसे वो पकड़ पाएंगे,
0: वही बात।
2: क्यों ना पहले उन लोगों के लिए मन को पहले उदासी से दूर किए जाए।

0: काहे को डरे उदासी मन काहे को डरे। तो राजेंद्र जी, आज का विषय जैसे कि रखा गया है कि पंचमुखी हनुमान, हमारे सभी सुनने वालों इस समय उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि पंचमुखी हनुमान जो विवान ने अभी कहा कि वो कभी नहीं देखा है, शांता जी ने कहा कि हमें नहीं मालूम है उसके बारे में, तो हमें आप क्या सुनाने वाले हैं कुछ उसके बारे में। पहले तो ये बताओ कि जैसे हम सब कहीं मंदिर आदि गए तो वहां कैसे पहचानेंगे पंचमुखी हनुमान।
1: पंचमुखी हनुमान यानी पांच मुंह, जैसे एक मुंह बीच में दो इस तरफ, तो जो बनाई रहेगा तो पंचमुखी पहचानना बड़ा सरल है। पांच मुख तो पंचमुखी हो गया। हाँ,
0: तो शांता जी आपने समझ गया?
2: हाँ, हमने समझ गया। ऐसा जैसे कि विष्णु भगवान के सहस्त्र रूप
0: इसी प्रकार से उसमें
1: सहस्त्र नाम,
0: हाँ, तो उसमें ढेर सारे मुख होते हैं और इसमें पांच मुख के साथ होते हैं
2: जी।
0: तो राजेंद्र जी, ये तो समझ में आ ही गया है, तो आगे इसके बारे में हम सबको जरूर कुछ सुनाए, क्योंकि आज मुझे पता चला है, सुबह मैं देख रहा था ना
1: जी
0: व्हाट्सएप बरख पे कि हमारे शांता जी ने ज्योति का प्रकाश पे और कितने सुंदर सुंदर हनुमान जी का गीतों का और पिटारा से भर के लाए, तो वो भी सुनाना है
1: जरूर।
0: तो देखा जाए कि पंचमुखी हनुमान जिसके बारे में हम सब आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, क्या आप सुनाने वाले हैं हम सबको, कुछ सुनाइए।
1: जय श्री सीताराम मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी की कथा श्रवण करेंगे और इस कथा को बड़े प्यार से और दिल से सुनेंगे ताकि समझ पाएँ, और जब समझेंगे तो उनके मन में उतर भी जाएगी। तो लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला, अंततः मेघनाद मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, मद जानी ला
0: ना, नहीं
1: घमंड,
0: घमंड
1: जाने,
0: हाँ घमंड तो जानते
1: हाँ। तो राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया,
0: स्ट्रेस में आ गया
1: हाँ। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ कैकेयी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण के दो भाई पाताल में बसे थे, अहिरावण और महिरावण।
0: तो राजेंद्र जी, पाताल किसको कहते हैं?
1: पाताल कहते हैं जो हमारी जो जमीन है इसके नीचे वाले जो हिस्सा है,
0: नीचे
1: इस धरती से नीचे वाला।
0: तो पृथ्वी पाताल और आकाश ना,
1: आकाश पाताल
0: ऐसा होता है
1: तभी, हाँ ऐसा होता है। तो उन्होंने उनको याद दिलाई तो रावण को याद आया कि यहाँ दोनों तो उसके बचपन के मित्र भी रहे हैं। तो लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही थी। जब रावण लंका का राजा बना तो उनको याद भूल ही गया था कि कोई और भी है। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोना के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। कोई कामाख्या माता जो उड़ीसा में रहे उसके परम भक्त थे वो। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने में विभीषण चिंता में पड़ गए।
0: विभीषण जी चिंता में पड़ गए।
1: विभीषण जाने लगा कौन रहे?
0: रावण का
1: छोटा भाई। हाँ,
0: तो रावण का छोटा भाई चिंता में पड़ गए
1: क्योंकि वो राम की सेना में आ गए थे ना। राम के साथ आ गए थे विभीषण।
0: हाँ,
1: तो वो फिर वहाँ का सारा
2: भेद बता दी।
1: हाँ,
0: ओ ऐसा
1: एक चाहे रखे ऐसा ना।
0: तो क्यों ना पहले हम एक, क्योंकि अब तो हनुमान जी का वृतांत धीरे धीरे आने वाले हैं, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: जरूर,
0: और देखते हैं शांता जी कौन सा गीत हम सबके लिए खोज करके रखे हुए हैं।
1: हाँ।

0: हे महावीर करो कल्याण, तो जरूर महावीर कल्याण करेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को राम लक्ष्मण को सौंप दिया जाए। साथ ही वे अपने भी निगरानी में लगे थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुबेल पर्वत पर बनी थी। राम लक्ष्मण की कुटिया कहाँ पे बनी थी?
1: आपने कहा पर मैंने मेरा बटन ऑन नहीं किया तो मैं क्यों कहूँ?
0: तो चाहे थोड़ा ध्यान दे कि राम लक्ष्मण की जो कुटिया बनी थी सुबेल पर्वत पर बनी थी, लंका में सुबेल पर्वत पे बनी थी। हनुमान जी ने भगवान राम जी की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र या असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था।
2: अच्छा, तो उस समय पे भी अपने जगह
0: हाँ
2: प्रबंध किया जाता है?
0: हाँ, कर
2: अच्छा।
0: अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली, असफल रही। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। हाँ। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए।
2: अच्छा।
0: विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। तो विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वह उसका पीछा करे। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप में ही निकुम्भला नगर पहुंच गए।
2: हनुमान जी पक्षी के रूप धारण कर लिए?
0: हाँ। निकुम्भला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना।
2: अच्छा।
0: कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की वार्ता से ही बजरंग बलि को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे।
2: तो कबूतर जी, अगर कबूतर को नहीं सुनता बात करने के लिए तो हनुमान जी को शायद पता नहीं चलता।
0: हाँ, हनुमान जी को पता चलता लेकिन थोड़ा टाइम लगता, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया।
3: यानी कि हनुमान जी कबूतर चिड़िया के रूप धारण किया,
0: चिड़िया का रूप धारण किया,
3: ऐसा
0: पक्षी रूप धारण किया और कबूतर कबूतरी बात कर रहे थे वहाँ। तो हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर बानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया।
2: अच्छा।
3: आधा शरीर बानर का, आधा शरीर मछली,
0: मछली का
3: बानर बोले तो
0: बंदर,
3: बंदर
0: मंकी,
3: मंकी और आधा शरीर मछली का,
0: मछली फिश।
3: ओ ऐसा।
0: हाँ, वो क्योंकि उसकी माता मछली थी और पिता हनुमान ही थे, तो इसलिए वो उस समय की वो दूसरा विषय है। जब लंका से हनुमान जी लंका पे गए थे, उस समय जब लंका से उड़ रहे थे तो उस समय उनके शरीर से पसीना का बूंद टपकी और मछली खा गई, तो उसी से वो पुत्र पैदा हो गया। हाँ,
2: रामेश्वर से लंका
0: जब गए थे, उस समय की बात है। चलते आगे की तरफ बढ़ते हैं। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया। हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके।
3: पर राजेंद्र जी, इस बात को मुझे थोड़ा चिंतन हो गया।
0: कौन से बात?
3: इस बात को मुझे ये हुआ कि विवान आपने भी रामायण देखे हैं, रामायण देखे तो ये जो वानर रूप और मछली, तो उसका उसको आपने देखे रामायण में कि नहीं?
4: हाँ।
3: उसका नाम, उस नाम क्या था?
4: पता नहीं,
3: तो शायद अभी हम सबको सुनने को मिलेंगे।
0: हाँ, हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ।
2: अच्छा।
0: और एक मछली से पैदा हुआ हूँ।
3: ये हुआ ना बात।
0: मेरा नाम है मकर ध्वज।
3: मकर ध्वज।
0: हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गई, वह वीर की बात सुनने लगी। मकर ध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीना के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुंह खोला था, वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई, उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकर ध्वज को बताया कि वही हनुमान है। उन्होंने बोला, मैं ही हनुमान हूँ।
3: तो वहाँ पता चला कि उन्हीं का बेटा है।
0: हाँ, मकर ध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गला लगा लिया और वहाँ आने का कारण बताया, पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो।
2: तो वो पुत्र जो था वो हनुमान जी की तरह बलशाली था।
0: हाँ, तो बलशाली होगा नहीं, वो पिता बलशाली रहे तो पुत्र भी तो बलशाली।
2: इसलिए, हाँ, तो इसलिए उन दोनों में इतना ही जंग चला।
0: हाँ, मकर ध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं, बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं, उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का बेस धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए।
3: किसका बेस, राजेंद्र जी?
0: मधुमक्खी,
3: वो छोटा
0: शहद जो बनाता है।
3: हाँ,
0: बी।
3: ओ, हनी बी।
0: हाँ,
2: होनिंग
3: बैग।
0: होनिंग बैग,
3: उसका रूप धर लिया।
0: हाँ, हनुमान जी, हाँ, हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं?
3: तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक शांता का पिटारा सा दूसरा गीत चला देते हैं?
0: जरूर,
3: क्योंकि ये अब तो समस्या गर्म होने लगा है। शांता जी,
0: विशाल होने लगा है।

0: जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का मेरा नाम। बताइए शांता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: हाँ, गीत से पहले आपने कहा कि हनुमान जी मधुमक्खी के रूप धारण कर ली।
0: हाँ
1: हाँ, तो उस पर मुझे ये याद आ गई, हनुमान चालीसा के एक चौपाई, सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म जाने कि छोटा से छोटा, और विकट जाने बड़ा से बड़ा,
2: बड़ा से बड़ा।
1: हाँ, तो ये मुझे याद आ गई, तो हमने कहा लगे हाथ जरूर से सुना दूं, क्योंकि हनुमान चालीसा जो निचोर है, आप उसे जरूर से पढ़े और उसे समझे, बहुत आनंद मिलेगा।
2: तो राजेंद्र जी, अब शांता जी ने कुछ सुना ही दिया तो मेरा दिल में कुछ खौल रहा है, बता दे संजय जी।
0: जरूर,
2: तो कहने को तो मन है।
1: हाँ, तो लगे हाथे बता दो, वादा वादा क्यों?
2: क्योंकि उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का चौपाई। राजेंद्र जी, ऐसा हुआ क्योंकि ये तो व्यक्तिगत बात हो जाए ना शांता जी,
1: अभी आपने शुरू नहीं की तो हमने बता ही पाएंगी कि व्यक्तिगत है या कैसे।
2: ऐसा हुआ राजेंद्र जी, एक बार मेरे साथ एक समस्या हुआ। समस्या हुआ, हम सब काम से गए वहाँ चकिया। चेखिया में तो वो नेचर पार्क है ना, वो बड़ी बड़ी जंगल है और वो पहाड़ है।
1: अच्छा,
0: वो चेखिया में?
2: चेखिया में। तो वहाँ हम सब गए काम से वहाँ, और कहते सर्वाइवल करें। तो सर्वाइवल करने को गए राजेंद्र जी वहाँ, तो हम सबको अब कुछ खाना पीना हो रहा था, खाना पीने के बाद, और बोले अब चलो, क्योंकि ये गोरे लोग कार्यक्रम बनाता है, प्रोग्रामा बनावे बढ़िया। तो हम लोग के बैठाए कार में और ले जाकर अंधेरा रास्ता में, काफ़ी दूर अंधेरा रास्ता में रोक दिया कार।
1: अच्छा,
2: अब कार रोक दिया तो मैं जब देख रहा हूँ बाहर तो अंधेरा ही अंधेरा,
1: गुप्त अंधेरा,
2: गुप्त अंधेरा,
0: गुप्त नहीं गुप्त,
2: हाँ, एकदम काला, एकदम अंधेरा। राजेंद्र जी, वो समस्या तो देखकर तभी से डर लगने लगा था, तो उन्होंने अब सिर से लगा दिया एक लाइट
1: जी,
2: और एक एक का और निकाल निकाल करके कार में से ले जाते, बोले ले ये रास्ते से जाना, आपको फॉलो करना है, जब तलक पायल, पायल बोले ना, जब तलक पायल नहीं देगा घूमने के, आपको मोड़ना है, तब तलक आपको जाना है। तो मैं तो खुद को बड़ा ये नहीं कहना चाहूंगा कि बहादुर हूं, पर उस समय डर लग रहा था
1: जी।
2: और वो सबके ना कि दो दो के साथ, एक एक
0: एक एक, हाँ। एक एक के साथ क्या करना था?
2: वो चलना है
0: अंधेरे में।
2: हाँ, अंधेरा में सिर्फ एक लाइट सिर से लगा दिया है और चलना है, और फासला 5 मिनट का। अब जब मेरा नंबर आया तो मुझे भी जाना है, तो मुझे इतना डर लग रहा था, तो फिर भी सिर से लगा करके लाइट जा रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ दूसरा वाला दिखता नहीं, पांच, क्योंकि 5 मिनट के फासला है। तो उस दिन मुझे पता चला ये हनुमान चालीसा का 24वां श्लोक का।
0: जब पता चला
2: तब उस दिन मुझे 24वां श्लोक ये बड़ा बढ़िया से पता चल गया, क्योंकि हम चल रहे अंधेरा है, और अंधेरा में बस सिर्फ वही याद आ रहा है कि 24वां श्लोक। शांता जी, आपको पता कौन है हनुमान चालीसा में?
1: भूत पिशाच।
2: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। अब हम चल रहे, ऐसे चलते चलते जा रहे, और आगे में जब चलते जा रहे तो देखते हैं पत्थर का बना हुआ ना, तो पत्थर का बना हुआ, तो और करीब जब जाते तो देखते हैं वहाँ वो कब्रिस्तान है।
1: वाकी में?
2: हाँ, वाकी में कब्रिस्तान, जर्मन का, जो तोयडेवेरटोलो का कब्रिस्तान वहाँ बना। अब वहाँ मुझे बस यही याद था कि हनुमान जी कुछ बचाओ। तो यही एक वृतांत है जो हम उस दिन, और जा करके पता चल गया कि उस दिन से कि 24वां श्लोक हनुमान चालीसा का
1: आज तक कंठस्थ हो गया,
2: एकदम कंठस्थ हो गया शांता जी।
1: और मुझे ये बात भी पता लगा कि चलते चलते चलते रहना, कि चलते चलने का नाम जिंदगी, रुकने का नाम। आज की प्रोग्राम में हमने ये भी गीत सुने। हाँ,
0: क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ें और इसके बाद आगे का वृतांत सुनाएंगे।

0: राजेंद्र जी, सुंदर गीत जो चलाए आपने और ये गीत को सुन करके हम सभी यहाँ हिलने लगे थे। और यहाँ जबकि मैसेज आए हैं मार्टिना जो इटली में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम सबको बहुत खुश है होते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हमारे और देशों से भी सुना जाता। और मंजू जी जो दिल्ली द्वारका से ये कार्यक्रम को सुन रहे, तो
1: द्वारका सेक्टर 14
0: द्वारका से हाँ। राजेंद्र जी और वहाँ जा कर के, और हम सब आने वाले हैं बहुत जल्दी वहाँ सेक्टर 14 तक। तो दोस्तों, यहाँ कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश के यही लक्ष्य होता है कि हमारे जीवन का ज्योति जो इस समय जो जल रहा है उसमें कुछ और प्रकाश आए। शांता जी कुछ कहने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ चश्मा पकड़ लिए है।
1: और शांता जी कहने वाले कुछ डच में
0: कुछ डच में कहने वाले जरूर।
2: शांता जी अपना चश्मा सोया कर रहे हैं। हाँ, तो आपने गुजारिश की डच में कुछ कहे तो मैं जरूर कहूंगी, डच में कुछ कहूंगी हनुमान जी के बारे में।
1: हाँ।
2: हनुमान इज द हिंद खोद द स्टार्ट फॉर ऑन बखरेंस द लिव द क्राफ्ट मूत टू वेडिंग द फोसी एंड फरत्रोवन। हाँ जी, het levens verhaal van Hanuman is een uitdrukking van zuivere bhakti yog. Hij wijst ons een pad dat ieder van ons kan volgen in zijn alledaagse leven. Hanuman brengt iedereen die zijn genade zoekt een gewelddadige verlichting aan van zorgen, stress, vermoeidheid en pijnen. यहाँ तक हमने बताई और आगे में राजेंद्र जी कुछ सुनाएगा, उसके बाद में हम फिर आपसे बताएंगे।
1: बढ़ते हैं आगे की ओर। हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाखी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट रावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ, यह दोनों मेरे भक्त तो हैं पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं, आप अपने प्रयत्न करो सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे अलग अलग दिशाओं और स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं, जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जा सकेंगे उसका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बड़ी चलाने के लिए आ रहे थे, परंतु जी ने अब माँ कामाख्या की रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। तो क्यों ना एक संजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: अब मैं क्या कहूँ राजेंद्र जी, कहने के तो बहुत है पर क्या कहूँ। इस समय जो हमारे साथ
1: हाँ
0: विवान जी भी बैठे हैं,
1: विवान जी आज हमारे साथ
0: नेदरलैंड्स में कुछ कहने वाले।
3: हनुमान जी
0: व्हाट हैप बकरी पर फन। हनुमान जी
3: आई थिंक राम एंड लक्ष्मण हेल्प।
0: En tijdens welke vritant?
3: In Pataal Lok.
0: Pataal Lok.
1: Oh, to sab
0: samajh gaya.
1: Samajh gaya.
0: To theek hai. To yahan karyakram jo bachcho bhi samajh sakte hai Rajendra ji. To abhi to kuch aur kehne wale hai Vivan.
1: Haan, abhi hamara samay hota hai news ki aur. या कुछ आप पहले कुछ कहना चाहेंगे?
0: हमें तो अपना और न्यूज का जो बात होता है तो जरूर रख देना चाहिए,
1: तो
0: ताकि हम सब
1: न्यूज की ओर बढ़ेंगे कार्यक्रम आगे की तरफ।
4: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik-Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए माउथ के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Fahon Hindustani Radio ka news jo tha purn hua. Hum badhte hain agle karyakram ki aur iske baad hamare jo aaj ke मेहमान हैं थोड़ा हम पहले करेंगे इसके बाद वो शुरू करेंगे तो पहले हम चाहे थोड़ा करें हनुमान जी के बारे में हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ यह दोनों मेरे भक्त तो हैं पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं तो इसके जब इस प्रकार की बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है तो हनुमान जी बोले मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोके से करो झरोके से पूजा आरंभ हुई ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोके से चढ़ाया जाने लगा अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाला गया दोनों बंधन में बेहोश थे हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया विवान भगवान अब कुछ आप बोलना चाहेंगे तो बोलिए
2: ऑन सो विवान
0: जैसे कि आपने माइक इस समय ऑन कर दिया है तो जैसे ऑन सो विवान के लिए ये प्रश्न रखा गया कि विवान वेलक हेल द दाद कैं फन हनुमान जी कैं उबराउट एंकल ऑफ नीत कैं ऑन सो वात फरतल दर ओवर
3: जो कैं फरतल
0: या ग्राह सेल्फ विवान आज दैट विल वी ग्राह होर
3: हनुमान वाज सो मैक्टिग दैट हाई एन केयर Als kind de zon als een rode vrucht zag en die inslikte. Pas na het dringend verzoek van God rispte hij de zon weer op.
0: Zo, dat is ook een mooie irritant van Suryadev, hè?
3: Ja.
0: Ken je nog meer van die heldendaden van Hanumanji?
3: Ja, zoals net verteld, Hanuman ging ook naar de onderwereld, dus Pataallok, waar hij Ram en Lakshman had bevrijd, die waren ontvoerd. En Ahiraven, een van de zonen van Raven, versloeg en op zijn schouders naar Lanka terugbracht.
0: Nou, dan ben ik nog benieuwd, hè, Shantaji.
2: Zeker.
0: Of hij nog meer van die irritant van Hanumanji kent. Heb je nog meer? Weet je nog een paar?
3: Ja, toen Lakshman Bhagwan tijdens strijd flauw viel, moest Hanuman hem gaan redden. Dus ging hij op zoek naar Sanjeevani. Dat is een geneeskrachtige kruid. Maar hij wist niet welke van alle kruiden het was. Dus hij heeft een hele berg tot meegenomen om Lakshman te redden.
0: Puur voor die heilige kruid of Sanjeevani Bhuti?
3: Sanjeevani Bhuti.
0: Dat is ook heel knap van Vimaan dat jij nog enkele vritanten van Hanumanji. En hoe kom je daarachter? Heb je in het verleden wel eens films? Want er zijn ook nog tekenfilms geweest wat jij heel graag keek, hè, vroeger van Hanumanji.
3: Ja, klopt.
0: Kijk je nog steeds films van Hanumanji? En hoe kan je dat überhaupt, als je dat kijkt, hoe kan je dat zien?
3: Ja, soms. We hebben nog oude dvd's liggen. En op YouTube staan ook filmpjes.
0: Dus, en wat zou je aan kinderen willen vertellen? Van, moeten ze dit wel katha's, oftewel de Vritanten, in een tekenfilm dat heel mooi gemaakt is vanuit India. Moeten ze dit wel vaker zien?
3: Ja, als je geïnteresseerd bent, zou ik zeker kijken.
0: तो राजेंद्र जी जैसे कि विवान ने कुछ संदेश और हनुमान जी के वो भी सुना चुके हैं तो हम सब क्यों ना वृतांत के आगे बढ़ते हैं शायद अभी
2: हाँ इसमें हाँ इसमें मुझे संस्कार दिखाई दे रहे हैं
0: अच्छा तो संस्कार कुछ
1: तो नैनों में तेरी ज्योति सांसों में तेरा नाम क्यों ना इसका
0: चला देते और निकाला गया हमारे शांता जी के पिटारा से
1: हाँ

0: नैनो में तेरी ज्योति, सांसों में तेरा नाम, बहुत ही सुंदर जो गीत था वो बहुत ही अच्छा था। चलते हैं आगे की ओर। पर यह युद्ध आसान न था, अहिरावण की बात चल रही थी युद्ध की, तो उस समय आसान नहीं था युद्ध। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते, तो फिर पांच पांच के रूप में जिंदा हो जाते। बड़ी मुश्किल से तो पहले वो मरते, फिर पांच पांच के रूप में जिंदा हो जाते दोबारा।
1: तो ये बड़ा तूफान,
0: बड़ा तूफान। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है, अहिरावण उसे ब्लात हर लाया है, वह उसे पसंद नहीं करती पर मन मार के उसके साथ है, वह अहिरावण के राज जानती होगी, उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए, आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुँचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसकी चुंगुल से मुक्ति करा देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ, मेरे

0: ऊपर रही रावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं रावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने रावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप रावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से ये रावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपनी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। अगर आप मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं ये रावण के बध का रहस्य बताऊंगी।
1: चित्रसेना,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रसेना
0: ने कहा।
1: चित्रलेखा तो जो कथा सुनाते, चित्रसेना ने, और यानी कि उसके पास वो गुप्त राज था।
0: हाँ,
1: जैसे ये मारा जा सकता।
0: हाँ, फिर हनुमान जी सोच में पड़ गई, भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी न स्वीकारेंगी, मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। फिर सोचने लगी कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटी। हनुमान जी बोली, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब हमारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो उसे अपशकुन मांगकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। हनुमान जी शर्त मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि वो शर्त रखी कि एक जो
1: जिस पे यानी कि जो पलंग पे
0: यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे, जिस पलंग पर भगवान राम उनके साथ बैठेंगे,
1: हाँ जी,
0: वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूट गया तो मान लेना कि अशकुन हो गया और वचन टूट जाएगा,
1: कैंसल। बात,
0: हाँ, तो क्यों ना एक सुंदर नगमा की ओर बढ़े और फिर हम
1: आज तो नगमा काफी। पर राजेंद्र जी, विवाह को भी मैंने और प्रश्न करना है।
0: हाँ, जरूर,
1: क्योंकि हमारे यंगर जो है इस समय ये कार्यक्रम को सुनते हैं, और यंगर को ये जरूर ये संदेश देना है कि कुछ ना कुछ उन्हें भी यह प्राप्त है कि इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है कि ना। तो विवान, आप ये बताइए कि और हनुमान जी
2: Zou ik er eentje vertellen?
1: Je mag zeker eentje vertellen.
2: Nou, toen Ram Ravan had verslagen en terug naar Ayodhya ging, hielden ze een feest voor hun winst. Toen kreeg Hanuman een cadeau van Sita. Dat was een mala genoemd, met allemaal parels. Maar in plaats van dat Hanuman dit aandeed, ging hij in elke parel kapot maken en kijken of hij Sita en Ram kon vinden. Toen begon Lakshman hem uit te dagen en zei hij waarom hij dat doet. Toen vertelde Hanuman dat hij had gehoord dat Ram en Sita overal aanwezig zijn, in elk voorwerp of in elk mens. En toen uit uitdaging vroeg Lakshman aan hem of Sita en Ram ook in zijn hart zijn. En om dat te bewijzen scheurde Hanuman zijn borstkas open en wat bleek, Sita en Ram waren daar ook aanwezig.
1: सो तो राजेंद्र जी, ये वृतांत तो शांता जी, इस पे आपको कुछ कहना? विवान जो ऐसे ये संदेश को सुना है कि ये तो मुझे भी ना पता होता पर इन्होंने ये वृतांत बताया कि कैसे कि हनुमान जी का, और उन्होंने अपना सीना फार करके और उसमें ये संदेश देते हैं कि भगवान उसमें एकदम बिल्कुल साक्षात है। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं?
0: हाँ, गीत की ओर तो बढ़ेंगे,
1: पर मेरे ख्याल से शांता जी भी कुछ पहले कहने वाले हैं।
0: हाँ,
1: तो शांता जी पहले आप।
0: नहीं, भारत से अभी मंजू जी ने कुछ भेजा है,
1: तो पहले मंजू जी के
0: वाला पढ़ा जाए।
1: हाँ, जरूर सुना दिया जाए।
0: मंजू जी कहती हैं भारत से कि प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं।
1: प्रेम और मित्रता मन से होते हैं, मतलब से
0: नहीं। तो ये संदेश कितनी कंट्रियों में सुन लिया लोगों ने मंजू जी का?
1: बस ज्यादा नहीं 188 देशों तक के कार्यक्रम को सुना जा सकता है। तो हम सब कुछ न कुछ संदेश यहाँ पर रख देते हैं और अभी हम सब और भी संदेश लेकर आए हैं, पर राजेंद्र जी शांता का पिटारा की ओर देख रहे हैं और कुछ उसमें से निकाल करके हम सब के लिए छोड़ने वाले हैं।
0: शांता जी का पिटारा से एक चीज निकली हुई
1: और छोड़ देते हैं माइक तो पहले शांता जी का तो आ नहीं इस समय, तो शांता जी पहले

0: नैनों में तेरी ज्योति, सांसों में तेरा नाम, बहुत ही सुंदर जो नगमा था, बहुत ही अच्छा था। तो क्यों ना हम आगे की तरफ बढ़े। शांता जी कुछ कहना चाहते हैं अपने पिटारा से?
1: शांता जी पिटारा आजकल शांता जी सिर्फ पिटारा में गाना भर के नहीं लाता है, कुछ संदेश भी लेकर आता है।
2: हाँ। हनुमान जी के बारे में हम दच भाषा में कुछ कहेंगे कि हनुमान इस इनकरनासी फन खुद शिवा शिवा फॉरम सामन में ब्रह्मा एंड विष्णु द थ्री एन हेड फन खुद इन द हिंदुइज्म ब्रह्मा इज द स्केपर विष्णु इज द इंस्टेंट होल्डर एंड शिवा द फर्नीतर हु वेल हैथ नीड सो लाइक खाद हिंदुइज्म अर्थ फन हैथ पस्तान फन एन खुद खुद इज फॉरमलोस द अर्थ थिंग van zijn voortreffelijke kwaliteiten vereren de hindoes in de verschillende godheden. Alle godheden zijn uitdrukking van de ene.
1: तो शांता जी भी हॉलैंड यानी कि डच में ये हम सबके लिए कुछ संदेश को और सुना ही दिए। और राजेंद्र जी ये बात हुआ कि अभी भाई महेंद्र जी जो हमारे बड़े भैया है, जो हमारे अनाउंसर साथी जिनसे हम सीखते हैं, कोलेखा है, तो उन्होंने फोन किया और ये बात रख दिया कि भाई ये तो बताओ कि कौन जानते हैं मगर ध्वज का माँ का नाम। तो अभी तो हम सब जरूर ये इसके बारे में खुलासा करने वाले हैं, पर जो जिसके पता होगा तो हम सबको फोन करके बता सकते हैं। शांता जी आपके इसके बारे में क्या ख्याल है?
2: जरूर से फोन लगा,
1: क्योंकि मगर ध्वज तो था जो और हनुमान जी का पुत्र, पर उनकी माँ का नाम क्या था, तो हम सब जरूर उसका और खुलासा होने वाले हैं। पर राजेंद्र जी बस समय का रफ्तार जोरी से चल रहा है और हम सबको आगे बढ़ना है, तो
0: जरूर
1: आगे का वृतांत क्या
0: है? आगे का वृतांत है, जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई, उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है, इन दोनों के कुछ शरारती राक्षसी मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया, मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे।
2: भ्रामरी मतलब
0: मधुमक्खी?
2: अच्छा,
1: मधुमक्खी।
0: भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी को पीड़ा सुनकर आया था, अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते थे, ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया उनकी उतने नए रूप बन गई, इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। तो क्यों ना एक कम सुंदर सा नगमा की तरफ बढ़ें और इसके बाद
1: राजेंद्र जी नगमा की ओर बढ़ेंगे जरूर, पर मुझे तो कुछ और कहना था।
0: आप पहले आप कह दीजिए।
1: पहले मैं?
0: हाँ।
1: तो ये है बात, अपने कहावत है कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितना बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। और ये बात सुन के तो मैं विवान जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि विवान यह सो फिल मोह और वृतांत फन हनुमान जी फरतेल्थ मार बहालफा आल दी ओफर हनुमान जी हत लिखाम लक्राख वत है बस्खिक्त हत है ओक नोख आख्त आंद्र क्राख्तन कहीं वत दार ओफर फरतेल कहीं ये दी
3: ja, deze krachten worden siddhis genoemd. En hij had er acht nadat hij ook natuurlijk heel sterk was en gewoon veel lichamelijke kracht had. Fuck. Zijn eerste was Anima, de gave om zich te verkleinen. Mahima, de gave om zich te expanderen. Garima, de kracht om zich te verzwaren. Lakhima, de bekwaamheid om zijn lichaam lichter te maken dan de lucht. Dus heel erg licht. Prati, de kracht om iets naar willekeur gedaan te krijgen. Prakam, ja. De kracht om iets tevoorschijn te halen of te laten verdwijnen. Vashitva, de kracht om de controle te hebben over alle schepselen en hun naar jouw wens te laten handelen. Ishitva, de kracht om dingen uit het universum te materialiseren en te doden, de doden te laten herleven.
1: तो दोस्तों जैसे कि आपने सुन रहे हैं कि भगवान हनुमान जी को आठ प्रकार के और भी और शक्तियां थे जिसे वो छोटा भी बन सकते थे तो शांता जी आपको ये वृतांत भी पता होगा कि वो अपने आप को इतना छोटा कर लिए थे कि सुरसा के मुंह में जाकर निकल गए और दुनिया पे एक ही मंदिर बनाया गया है कि जहां पर सुरसा भी और वो मंदिर है वो आपको पता कहां
2: मुझे नहीं पता
1: विवान आपको पता कहां है
3: दिल्ली
1: दिल्ली का कहां
3: वेरी
1: तो दोस्तों विवान को बोले कि पता कह रहे हैं कि पता है पर दिल्ली का और करोल बाग
0: किस चीज का
1: सुरसा
0: हां
1: तो वहां पर और ऐसा मूर्ति है तो जाकी जैसे कि मुख की तरह बना हुआ है उसमें लोग जा सकते हैं अंदर और हां और आ सकते हैं तो हां इस प्रकार से तो राजेंद्र जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक सुंदर गीत के से
0: हम उस मंदिर में बहुत बार जब हमारा रास्ते था कॉलेज का तो उधर से आते थे तो वहां पे बाइक लगाया और अपना चले गए मुख से
2: हां हां
0: पीछे से पूंछ से आ गए
1: पूंछ से आते थे ऐसा
0: हां करोल बाग में बड़का मूर्ति रहे
1: हां बहुत बड़ा मूर्ति वो तो वो मूर्ति जब बन रहा था 2001 से नहीं 2001 वो काफी साल लगा वो मूर्ति को बनाने को मंदिर को बनाने को
0: हां
1: तो राजेंद्र जी अभी तो हमने सिर्फ देखा है हमने गया नहीं तो अब तो जाना पड़ेगा
0: जाना पड़ेगा जरूर
1: जाना पड़ेगा तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले
0: जरूर

0: मंगल बार तेरा है, और कौन सा बार तेरा है बता रहे थे शांता जी?
1: शनिवार तेरा,
0: शनिवार तेरा है। तो मंगल बार और शनिवार तो दोनों रहे ही, तो क्यों ना उनको आगे बढ़ाया जाए।
2: दियो तब चाहिए कौन विचार बिचारो।
0: तो इस प्रकार से मंगलवार और शनिवार दोनों उन्हीं का रहा, आगे बढ़ते हैं। इस अमृत के कारण दोनों राक्षस जैसे बात चल रही थी उस तरफ बढ़े, फिर हनुमान जी रहस्य से जानकर लौटे। मकर ध्वज ने यही रावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। वही आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए, उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोली, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार से लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया, फिर भी हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी को वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों एक साथ बुझेंगे, तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में ब्राह्मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस प्रकार हनुमान जी ने ये अपने रूप धारण किए, और उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों द्वारा एक साथ पांचों दीपकों को बुझा दिया। अब उसके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इस प्रकार पंचमुखी का आपने वृतांत सुना।
3: तो ये हुआ पंचमुखी का सारा रहस्य, ये था,
0: ये रहस्य था पंचमुखी का।
1: तो इसके बाद में, इसके बारे में मैं ये जरूर कहूंगी कि जिसको श्री राम का वरदान है, जिसको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनका शान है, बजरंग बली जिनकी पहचान है, संकट मोचन
0: नाम
1: हनुमान है।
0: तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ा जाए।
3: जरूर जरूर राजेंद्र जी, सुंदर सा नगमा के और हम सबको जरूर भरना है, क्योंकि राजेंद्र जी सुपर फास्ट तो है, पर चला देते पहले।

0: तो इस प्रकार से हमारा जो हनुमान चालीसा था उसका हम लोगों ने पाठ किया और सब लोगों ने किया। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय की। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहाँ आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुई, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था, वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने भी कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता है, अहिरावण तो मारने का भेद इसी ने बताया है, इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल न हो पाते, कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें, हम सबका जीवन बचाने के प्रति बस इतना कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी के इतनी तेज़ी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गई। वह कोई कदम उठाने की तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश होकर प्रभु जी श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना की उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई।
1: ओले।
0: हाँ।
1: अब होगा समस्या।
0: पलंग धाराशाही हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़ी और फिर चित्रसेना से बोली, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे यह तो बहुत अनिश्चित है, मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गई। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़ी बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊँगा। इससे वह मान गई।
1: तो यानी ये एक वृतांत जो अभी श्री राम का समय जो सतयुग कहा जाता ना।
0: हाँ।
1: और नहीं,
0: त्रेता
1: कहा जाता है। और ये उसे ये
0: द्वापर में
1: और उनके पत्नी के रूप में प्राप्त हुआ।
0: हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुबेल पर्वत पर लौट आए। स्कंद पुराण की कथा इस प्रकार से हुई। और बढ़ते हैं एक सुंदर सा नगमा की ओर। और जो महेंद्र जी कह रहे थे मकरध्वज की माता का नाम, किसी का फोन नहीं आया अभी तक,
1: तो अभी बाद में सुना देंगे, पहले गीत की ओर।
0: एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके ओर बढ़ेंगे।

0: मोह भयो ये संकट भारू। तो क्या किसी को पता है कि हनुमान जी की पांच छलांग?
1: राजेंद्र जी, पांच छलांग हनुमान जी ने मारा?
0: हाँ,
1: ये तो एक छलांग को पता है मैंने कि उन्होंने बस यहां से मारा छलांग और जाकर के श्रीलंका पहुंचा।
0: नहीं, पांच छलांग।
1: पांच छलांग।
0: अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी नारद मुनि और सनत कुमार ही ऐसे देवता थे जो अपनी शक्ति से आकाश मार्ग में विचरण करते थे, जबकि अन्य देवी या देवता के वाहन होते थे, और जो अन्य देवी देवता होते थे उनके वाहन या क्या होते थे?
1: वाहन
0: तो होते थे, वाहन
1: वाहन, यानी जैसे कि ब्रह्मा जी के और हंस होते थे ना।
0: हाँ, सरस्वती के,
1: सरस्वती का हंस।
0: हालांकि ऐसे भी कई ऋषि और मुनि थे जो अपनी ही शक्ति से आकाश मार्ग से आया जाया करते थे। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। कहते हैं कि धरती पर एक कल्प तक शरीर सशरीर रहेंगी। आओ जानते हैं कि वे पांच बार उड़कर गए थे या छलांग लगाई थी। पहली छलांग, हनुमान जी ने अपनी यह पहली छलांग अपने बचपन में लगाई थी। एक बार की बात है, माता अंजनी हनुमान जी को कुटिया में सुलाकर कहीं बाहर चली गई थी। थोड़ी देर में जब हनुमान जी की नींद खुली तो उन्हें तेज भूख लगने लगी। इतने में आकाश में उन्हें चमकते हुए भगवान सूर्य दिखाई दिए। हनुमान जी समझा कि यह कोई लाल लाल मीठा फल है। बस उसे तोड़ने के लिए हनुमान जी उसकी ओर उड़ने लगे। हनुमान जी सूर्य भगवान के निकट पहुंचकर उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। उसके बाद तो जगत में हाहाकार मच गया। आगे की कथा तो आपको पता ही है।
1: ये वृतांत तो आज मैं भूल ही गया था कि विवान ने भी कहे थे ना। तो ये बचपन का वाला,
0: ये पहली छलांग,
1: पहला छलांग।
0: अब दूसरा छलांग है, सबसे पहले वाली। पुत्र अंगद को समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए कहा गया, लेकिन अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन पुनः लौटने की मुझ में क्षमता नहीं है, मैं लौटने का वचन नहीं दे सकता। तब जामंत के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का अभाव हुआ, तो वे दो छलांग में समुद्र को पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले माता सीता को राम की अंगूठी दी, फिर राक्षसों का वध करने के बाद मेघनाथ के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया, और फिर रावण के उकसावे पर लंका दहन कर वापस लौट आए। ये उनकी दूसरी छलांग थी।
1: दूसरी छलांग।
0: अब तीसरी छलांग
1: तो सुना दो राजेंद्र।
0: राम लक्ष्मण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई बानर मूर्छित हो गए। जामंद के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तो उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी ने हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। चौथी छलांग,
1: ये था चौथी छलांग।
0: ये तीसरी छलांग थी, अब बढ़ रहे चौथी छलांग की ओर।
1: अच्छा,
0: अहिरावण रावण का मित्र था। अहिरावण पाताल में रहता था। रावण के कहने पर उसने भगवान राम के युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया। दोनों को यह पाताल लोक लेकर गया और वहां उसने देखा दोनों को बंधक बनाकर रख लिया। उनके अपहरण के बानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान जी के समक्ष प्रकट कर दिया कि कौन अपहरण करके ले जा सकता है। तब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपहरण से छुड़वाने के लिए पातालपुरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके ही रूप जैसा कोई बालक पहरा दे रहा है। उनका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे राम लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर पुनः युद्ध शिविर में लौट गए। ये उनकी चौथी छलांग थी। बढ़ते हैं पांचवी छलांग की ओर।
1: पांचवी छलांग की ओर।
0: इस छलांग में हनुमान जी लंका से सीधा अयोध्या पहुंच गए।
1: आग लगाकर?
0: नहीं, जब युद्ध समाप्त हो गया सब कुछ।
1: ओ जब युद्ध समाप्त हो गया तो सीधा
0: लंका से अयोध्या,
1: अयोध्या
0: एक छलांग में, और वहाँ से भगवान राम के राज्य अभिषेक में शामिल हुए थे और वहीं पर वे राम की सेवा के लिए नियुक्त हो गई। इस प्रकार से उनकी पांच छलांग सब लोगों ने सुनी। मुझे लगता कि जिनको नहीं पता था उनको भी पता हो गया। बढ़ते हम अपने किसकी ओर,
1: अभी एक सुंदर सा गीत की ओर।
0: हाँ
1: तो सुंदर सा गीत की ओर हम सब बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम लागी छूटेना की ओर बढ़ेंगे।
0: मुझे लगता है कि हमें लागी छूटेना की ओर बढ़ना पड़ेगा।
2: हाँ।
0: क्योंकि हमारा समय बहुत कम रह गया है,
1: तो हम सब उस ओर बढ़ेंगे। राजेंद्र जी और शांता जी, आज का संदेश तो काफी संदेश जो हनुमान जी के बारे में हम सबको प्राप्त हुए ना,
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत गंभीर था,
1: गंभीर रूप से। तो दोस्तों हम सब धीरे धीरे और वो गीत की ओर बढ़ रहे हैं, और वो गीत जो हम सब इस समय राजेंद्र जी प्लेयर पर रखने वाले हैं। तो राजेंद्र जी
0: बढ़ते हैं आगे।

दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वालों को भगवान कहते हैं और संकट हरने वालों को हनुमान कहते हैं। सुनने वालों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने सुनने के लिए, और यहाँ से सेविका शांता जी के प्यार भरी राम राम प्रणाम।

0: सब को एक नमस्कार डंकी वाला की मुख्य
1: सोच ले फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा।
2: सोच ले फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा।
3: तो गरीब तो सब दीवाना ही है, सोचना क्या है।
2: सुनने वालों जो कि हमारे साथ इस समय तक बने रहे 2 घंटा से, और मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी आज की, और हमारे साथ साथ देते हुए हमारा भी उत्साह बढ़ता है जब कोई साथ देता है। तो सबको यानी सेवक राजेंद्र सिंह का उनको प्रणाम, और फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय इसी अगले हफ्ते इसी समय इसी बार। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, नमो नमः।

जैसे कि आपने सुनी लिया है कि हम सब अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आकर जरूर पहुंच चुके हैं, और जैसे कि हमारे भाई महेंद्र जी ने ये प्रश्न रखवाए थे कि मगर ध्वज का माता के नाम का है, तो ये जरूर खुलासा किया जाता है कि उनका नाम मकरी थे। और ये बात जरूर हम जाने कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमारे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश आज के, और हमारे सहयोग देने वाले शांता खेमई जी, हमारे पैनल के पीछे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ नौजवान विवान भगवान जी, और मैं भी आपका सेवक संजय। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके पास जरूर और पहुँचे होंगे। सभी को एक शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं शांता खेमई जी और बबली आसरा जी जो इस समय स्टूडियो में उपस्थित है। तो पहले शांता जी अपना एंट्री लेते हैं, फिर बबली जी, फिर कार्यक्रम को हम सब बढ़ाते हैं।
1: हेलो, सुन सुन सुन मेरी जान, जिनका मन का भाव सच्चा होता है, जिनके मन का भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। आपको स्वागत है फंकारों की दुनिया में।
2: यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं।
0: सुनने वालों, आज का कार्यक्रम में जो हम सब रखने वाले हैं कि हमारे कलाकारों का और जो अपना हम सबको कला से अपना प्रदर्शन दिए, अपना कला से ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर रेडियो आज हम सब बना रहे हैं और वो गीत को छोड़ कर गए हैं। तो शांता जी, इसके बारे में जो आज हमारे पास नहीं है, जो फनकार हमारे साथ नहीं है, जो इन द यार सेस्तख इन द यार फैफतख के समय पे, तो मदन मोहन एक ऐसा कलाकार जो बहुत सा गीत हम सब का लिए और गाए, गा करके भी अपने और अंदाज में औरों को भी गवाए हैं।
1: यानी कि आज का प्रोग्राम चलेगा मदन मोहन के बारे
0: जी,
1: में।
0: जी, मदन मोहन जो एक सिंगर, एक राइटर, एक जो कंपोजर,
1: प्रोड्यूसर
0: और उन्होंने एक परिवार से जुड़े हुए और जिनका जन्म इराक में हुआ था ना?
1: जी हाँ, इसे तो हमने पढ़ी है, सुनी है। जी हाँ, इराक में हुआ था उनका जन्म।
0: उनका जन्म इराक में हुआ। और
2: मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में मदन मोहन जी का जन्म हुआ। उनके पिता राय बहादुर चुन्नी लाल इराकी पुलिस में काम करते थे।
0: मदन मोहन का जन्म जब जा करके और 25 जून नेखतीन कितना नेखती फीरन त्वेंतक ना?
2: हाँ जी,
0: नेखतीन फीरन त्वेंतक में हुआ सुनने वालों। और जो जा करके और इराक में हुआ था, और अभी नेखती फीरन त्वेंतक में तो इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यानी कि आज़ादी नहीं हुआ था।
2: जब मदन मोहन जी का जन्म हुआ तब ना भारत आज़ाद हुआ था अभी, और ना इराक आज़ाद हुआ था।
0: और उसके बाद में जो जा करके आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद में उन्होंने और जा करके भारत में आए कि उससे पहले?
2: ना, आज़ादी के बाद जब इराक आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तब उनके पिता भारत आए।
0: और भारत में गए भी तो एक म्यूजिक स्टूडियो में, यानी कि एक हकदार बन गया म्यूजिक स्टूडियो का ना?
2: ना, म्यूजिक स्टूडियो चलाते थे उनके पिता मदन मोहन जी के।
0: उनके पिता मदन मोहन जी का पिता एक म्यूजिक स्टूडियो चलाए करते थे। पर शांता जी, उस समय कहा जाता है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर का मतलब क्या है?
1: वही तो फिल्म के प्रोड्यूसर, तो उसके बारे में मैं डच भाषा में कहना चाहती हूँ, चलेगा?
0: एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल हाँ। चलेगा,
1: कारण कि हम सुनते हैं हिंदी में कि प्रोड्यूसर एंग्लिश में भी है, पर उसका महत्व हम नहीं जानते हैं,
0: हम में उसका खासियत नहीं जानते।
1: जी, तो हम डच भाषा में कहेंगे कि म्यूजिक प्रोड्यूसेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एस ए म्यूजिक प्रोड्यूसेंट दिक्वल्स प्रोड्यूसर खनूम ईमान दी द फरानतवर्दलक हाइट है फनत म्यूजिक। और हम देखें आगे में तब है कि प्रोड्यूसर आज प्रोड्यूसर ओक्वेल प्रोडक्सी लेदर खनूम,
0: तो उसका लेदर यानी कि, पर ये बात हो जाता है यानी कि खर्चा जो होता है ना,
1: सभी बागदौर उसके हाथ में
0: हो जाता है।
1: जैसे कि हाँ, जैसे हमने कहा कि ओक्वेल प्रोडक्सी लेदर खनूम मैं ये हो साक लग बेसख मेहनत और खानी सेरन फन ऑडियो फिशवेल प्रोडक्सी die persoon zorgt voor de benodigde faciliteiten, materialen en mensen. Die persoon is dan ook daarbij zowel organisator als budget en tijdbewaker.
0: तीदबवाकर तो सुनने वालों, ये इतने सारे
1: जिम्मेदारियां
0: हो जाता है एक
1: प्रोड्यूसर जी।

0: और हम देखें और आगे में तो हैगा द रोल फन अ प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूसेंटन सेंड द मेंशन दी द क्वालिटेट फन द फिल्म हो हाउडन बहुत बड़ा जिम्मेदारी एंड एयरफोर सोरखन द प्रोडक्शन ऑफ टाइट एंड बिनन द बिनन हेड बजट फॉरलोप
1: यानी कि उस पे भी ध्यान देना पड़ता है कि बजट के अंदर अंदर जो हो सके क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए शांता जी बहुत खर्चा होता है ना
0: हाँ इसलिए
1: और एक म्यूजिक गीत उसमें डालने के लिए भी खर्चा होता होंगे
0: इसलिए सब एक टाइम में या कैसे यहाँ कहते हैं
1: डेडलाइन
0: हाँ उसके उसके उससे पहले ये सब हो जाना चाहिए नहीं तो खर्चा और बढ़ जाएगा।
1: तो दोस्तों आज का जो विषय है जो आज हम सब रखने वाले हैं कि मदन मोहन जी जो एक ऐसा कलाकार जो हम सब के लिए इतने ढेर सारे और गीत जो बना करके रख चुके रखे कितने तादाद में और उसके जो उनका जन्म हुआ नेखती फिरन त्वेंतक में ना
0: नेखती फिरन त्वेंतक
1: फिल्मी दुनिया में उन्होंने बहुत सा काम कमाया अपना और जो गीत के और रखे पर क्यों ना हम एक
0: वही मैं सोच रही हूँ कि ना कि गीत चला दे
1: एक गीत मदन मोहन का कंपोज किया गया
0: जी
1: तो हम रख देते हैं हमारे सभी सुनने वाले को लिए और अभी उसके बारे में और भी संदेश हम सब रखने वाले हैं

0: सुनने वालों, मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 बगदाद में हुआ और मृत्यु हुई 14 जुलाई 1975 मुंबई महाराष्ट्र में।
1: जी जैसे कि आप अभी सुनाए बायोग्राफी जो मदन मोहन का जो 1924 में जन्म हुआ और 1975 में उनकी स्वर्गवास हो गया, वो इतना अल्प आयु में उसका और यानी कि मृत्यु को प्राप्त किए, कितने साल के थे उस समय?
0: वो 51 साल के थे।
1: तो सुनने वालों, 85 तक यार के आयु में और मदन मोहन जी ने और कितने साल उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना सहयोग दिए, यानी कि जो गीत आदि से वो उन्होंने, क्योंकि ना कि सिर्फ शुरू शुरू में उन्होंने अपना गीत को गाए, फिर उसे वो पसंद नहीं था उसके आवाज़, और फिर उन्होंने फिर जा कर के कलाकारों के माध्यम से यानी कि जैसे लता जी, मुकेश जी और किशोर कुमार जी, अलग अलग लोगों के साथ और उन्होंने गीत को गवाए ना।
0: हाँ जी, उनका काम करने का समय रहा है 1950 से लेकर 1975 तक।
1: 1950 से लेकर 1975 तक उन्होंने काम किया।
0: वह एक महान गायक और संगीतकार थे।
1: सुनने वालों, तो इस प्रकार से मदन मोहन साहित उनके बारे में हम सब बहुत कम सुने होंगे, बस यही है कि रेडियो द्वारा शायद हम सब और उनका जो गीत चलाते हैं तो उनका नाम बस अर्ज कर लेते हैं ना शांता जी।
0: 1971 में उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला।
1: कौन सा फिल्म पे उन्होंने और फिल्म अवार्ड को यानी कि अवार्ड को प्राप्त किए बबली जी?
0: फिल्म दस्तक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन,
1: बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का और अवार्ड को प्राप्त किए। शांता जी आप कुछ सुनाने वाले थे।
2: मैं ये कहना चाहती थी, बबली जी ने कहा कि 1950 यानी 1955 तक से, तो 1955 तक ये कलाकार जो हैं मदन मोहन जी, यानी कि हम भी सोच के बड़े इतने दिन में मैं थोड़ा सा अकाउंट कर ली है कि उनका आयु जो 85 तक यार के था ना, तो लगभग 25 साल वो अपने ये काम की है।
1: जैसे मैंने सुना है शांता जी कि जब वो फिल्मी में आए, क्योंकि पहले जो वो लोग भारत में एंट्री लिए ना, क्योंकि इराक में जन्म हुआ उनकी।
2: हाँ।
1: और भारत में आए तो उनका पिता जो जा कर के फिल्मी दुनिया में और अपना उसमें जा कर के मिल गए, जिसका नाम, उनका पिता का नाम जो राय बहादुर चुन्नी लाल से लोग जानते थे, फिर मदन मोहन को और उन्होंने आदेश दिए कि तुझे मिलिट्री में जाना है, और मिलिट्री में उन्होंने जा कर के अपना काम भी किए, फिर उसके बाद में जो जा कर के वो, उसे गाना का शौक बहुत था और कहा जाता है कि वो कितने घंटों और ग्रामाफोन के पीछे बैठते थे। तो ये ग्रामाफोन है क्या चीज़ शांता जी?
2: ग्रामाफोन तो मैं अपने दिमाग के अनुसार तो मैं बता सकती हूँ, अगर आपने ये जो आपने तो हम मैं देख रही हूँ, जैसे प्लेटर स्पेलर साइड पे ना, और ऊपर में एक बड़ा सा
1: पिकअप के तरह
2: पिकअप के, हाँ
1: होते थे
2: हाँ, तो उसमें से आवाज निकलते थे। अब मेरे ख्याल से उसको भी
1: अपवेंद कर किया जाता था पहले के समय।
0: उसमें एक चाबी होती थी शांता जी, चाबी को वैसे घुमा के तो फिर रिकॉर्ड चलता था।
1: तो इस प्रकार से होते थे सुनने वालों, ऐसा भी होते थे। और उन्होंने कितने घंटों पहले यानी कि ये गायक बनने से पहले और राइटर बनने से पहले कितने समय तक उन्होंने उसके पीछे बैठे रहते थे। तो बबली जी आप कुछ और सुनाने वाले हैं हम सबको।
0: मदन मोहन जी हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। अपनी गज़लों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपने युवावस्था में वह एक सैनिक थे। बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद तथा लता मंगेशकर से इन्होंने कई यादगार गज़लें गवाईं, जिनमें आपकी नज़रों ने समझा फिल्म अनपढ़ 1962 में गीत शामिल हुआ। इनके मनपसंद गायक मोहम्मद रफ़ी थे। जब ऋषि कपूर और अजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो गायक के रूप में किशोर कुमार का नाम आया, परंतु मदन मोहन जी ने साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज़ तो रफ़ी साहब की ही होगी और अपने मनपसंद गायक मोहम्मद रफ़ी से ही गवाया और लैला मजनू एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई।
1: बबली जी, लैला मजनू एक दुनिया का और जो बॉलीवुड का एक ऐसा फिल्म हुआ जिनका याद आज तलक और अभी तलक किया जाता है।
0: हाँ जी, और उसमें गाने बहुत मशहूर हुए, संगीत भी बहुत हिट हुआ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: तो एक गीत वो कोई पत्थर सा, कैसे आपने कहा?
0: कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: तो हम चला देते हैं।

0: सुनने वालों, ये आपने गीत सुना फिल्म लैला मजनू से, और ये फिल्म इतनी हिट साबित हुई कि रंजीता और ऋषि कपूर की जोड़ी भी हिट हो गई इस फिल्म से।
1: सुनने वालों, यहाँ तक था जो सुंदर सा गीत निकाला गया लैला मजनू से। और शांता जी भी मैं देख रहा हूँ अपना तैयारी कर चुके हैं। शांता जी, आप क्या सुनाने वाले हैं हम सबको?
2: या मदन मोहन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हे बखोन इन बॉलीवुड द वर्कन आस असिस्टेंट फॉर म्यूजिक रिजिस्टर से रामचंद्र एंड क्रेस एंड एस्ट ख्रूत फिल्म मेट आंखे एंड दैट वेल ऑफ 1950 एंड लिव द द्रीहुक। आंखें फिल्म जो जिसे डिस्क्राइब कर है लिव द द्रीहुक। द फिल्म वाज अनसक्सेस, फिल्म आंखें वाज अनसक्सेस।
1: सुन वालों, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि पहला फिल्म मदन मोहन का फिल्म आंखें जो 1950 में और बनाया गया
2: जी 1950 में
1: बनाया गया।
2: और ये फिल्म जैसे मैंने कहा वाज अनसक्सेस। Vervolgens kwam er behoorlijk wat werk bij Mohan ji. Onder zijn eerdere films was de trilogie van films met zijn jeugdvriend Raj Kapoor. Aashiyana, film Aashiyana in 1952. En Dhoon ook in 1952 en Papi. In 1953. Helaas voor Madan Mohan hadden de films waarvoor hij componeerde niet veel impact. En alleen met Bye Bye 1956, waarin de legendarische gebroeders Kumar, Janik Ashok Kumar, Kishore Kumar in de hoofdrol speelden, kreeg hij enige succes. जी हाँ, इतने फिल्म में, तो फिल्म भाई भाई में जाकर फिर से उनको एक सक्सेस मिला है।
1: और शांता जी, जैसे कि मैंने सुना है कि अवार्ड आदि शुरुआत में उन्होंने नहीं पाया ना कोई फिल्म में, वो जाकर के जैसे अभी बबली जी कह रहे थे कि 1951 में पास जाकर के और अवार्ड का हकदार बने। तो हर एक कलाकार का ये इच्छा भी होते हैं कि मेरा कैसे मेरा कार्यक्रम हुआ, कैसा मेरा और जो मैंने अपना प्रोग्राम रखा कितना बढ़िया था, और उन पे जा कर के कोई एक पुरस्कार मिल जाता है तो कितना अच्छा भी लगता है ना।
2: वो बात सही है,
1: पर उनको इस बात का था कि वो पुरस्कार नहीं पा रहे थे,
2: फिर भी वो अपना काम जारी रखा।
1: काम भी जारी रखा,
2: हाँ, पुरस्कार के वो इंतजार नहीं की, पर भी अपन काम जारी रखा।
1: इस प्रकार से मैंने एक जो संदेश सुने हैं लता जी का, और उन्होंने अपने ओर से संदेश रखे थे, क्यों ना हम अपने सुनने वालों को उसके अंतर्गत सुनाते हैं।
3: बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

0: सुनने वालों, लता मंगेशकर जी को अपनी बहन बनाया था मदन मोहन जी ने। लता और मदन मोहन के रिश्ते के जुड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन जी इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर जी ने कोई गाना नहीं गाया। मदन मोहन लता मंगेशकर जी को अपने घर ले आए और एक राखी देते हुए कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसके बाद मदन मोहन जी ने लता जी को याद दिलाते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का एक ही गीत गाया था, आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वचन देता हूँ आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। सुनने वालों, मदन मोहन जी के मरने के बाद लता जी ने वो वादा निभाया। यतीन्द्र नाथ मिश्र ने अपनी लिखी किताब लता सुर गाथा में इस वाक्य का जिक्र किया है कि लता ने भाई मदन मोहन की मौत के बाद भी उनसे किया हुआ वादा पूरा किया था। दरअसल साल 2004 में फिल्म वीरज़ारा में मदन मोहन के कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया। तब फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए थे और हर बार की तरह भाई बहन की इस जोड़ी ने कल्याण जी गीतों की रचना कर दी।
1: फिल्म जो वीर सारा में और जाकर के और उन्होंने ये गीत को गाए, तो बबली जी ये बात हो जाता है कि वीर सारा बना नेकती फैंस इवन तक में जब मदन मोहन का मृत्यु हो गया तो वीर सारा तो त्वे दोसंत फिर में बनाया गया, यानी कि कुछ 30 साल बाद,
0: क्योंकि मदन मोहन जी ने कुछ ऐसी धुनें तैयार करके रखी थी जो 30 साल बाद उनके बेटे ने फिल्म वीरज़ारा में इस्तेमाल की।
1: तो सुनने वालों, एक कार्यक्रम में जो हमारे फनकारों की दुनिया में आज रखा जाता है कि 30 साल बाद, यानी कि इस प्रकार से हमारा भाई महेंद्र गुदर भी यहाँ होते थे स्टूडियो में और वो भी कितने गीत को चलाए जो यहाँ से चलाया जाता था कि जो कोई फिल्म में नहीं प्रयोग हुआ था। और इसी प्रकार से आज जैसे आप कह रहे हैं कि 30 साल बाद वीरज़ारा में उनका कंपोज किया गया गीतों को और जाके उसी का धुन में और जा करके रखा गया, और ख़ास करके उस समय जबकि लता मंगेशकर का और देहांत 2020 में हो गई ना, 2020 में वो और मृत्यु को प्राप्त कर लिए और फिर भी 2004 में वो जा करके और जो 30 साल पुराना बनाया गया यानी कि लिखा रहा उसे प्रयोग नहीं किया गया था और वीर सारा फिल्म में जा करके प्रयोग किया गया उसी धुन पे, और उसमें ना सिर्फ लता जी ने अपना आवाज़ दिए पर सोनू निगम और भी कलाकारों ने अपना आवाज़ दिए ना।
0: हाँ जी, उदित नारायण
1: के सिवा और भी कुछ
0: रूप कुमार राठौर
1: जी भी अपना आवाज़ दिए, पर सभी का धुन, क्योंकि एक बात होता है ना,
0: गुरदास मान जी भी
1: अपना और संदेश उसमें अपना और कला से प्रदर्शन दिए, पर ये बात हो जाता कि कलाकारों जो राइटर होते हैं ना, जो गीत को लिखते हैं, तो वो धुन भी उसी का होता है। हमारे जो गायक होते हैं जो अपना आलाप देते हैं उसमें, तो वो तो सिर्फ गीत गाते हैं। और शांता जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: उनके बारे में कहना भी मुश्किल, क्योंकि गला होना चाहिए और उसमें गाना गाने में भी एक कला है।
1: गाना गाने में भी एक कला है, जरूर उसका आवाज़ सुनाई दिया जाता है, पर उसके पीछे में जो काम होते, जो राइटर होते, जो गीत को लिखते हैं, गीत में गीत को धुन देते हैं, उसके बारे में हम सब बहुत कम जानते हैं, ऐसा है कि ना?
2: ये बात तो सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल सच है ये।
1: जो बिल्कुल उतना काम होने पे और बस गायक जिसे जिसके पास वो कला होता है, उसके पास आवाज़ होते हैं और वो उसी धुन पे चला देते हो, कितना रंगीला हो जाता है, कितना सुरीला हो जाता है, हमारे कानों को इतना अच्छा लगता है सुनने में ना।
2: बिल्कुल जी हाँ, आप सुनते हैं फनकार की दुनिया। तो यहाँ हम प्रोग्राम बनाते हैं मदन मोहन जी के बारे में और यहाँ पे भी कुछ लाइन मदन मोहन जी अपने आवाज़ में कुछ गाकर भी सुनाएंगे, साथ में लता जी भी रहेगा, तो यहाँ से ज़रूर से आप उस पर गौर करें और ज़रूर से आनंद उठाएं।
3: मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुनीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता।
4: एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात है। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप इस फिल्म में जरूर गाइएगा। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी।

0: उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे।
1: मदन भैया के लिए मैंने कई फिल्मों में गाया। इब्तिदा आशियाना के

0: jaren 50 mee, 60 of 70 mee, je Madan Mohan ji apne saaj aur sangeet ke saath hamari khatir bahut se gaane banaye hain, film banaye hain. Aur yaar 50 to 60 ko utna nahi chala, balki 60 se tot 75 tak jab tak ye raha bahut chala inka geet. Par 1975 mein 1975 mein inka dhyan bhi ho gaye hain. In 50 yaar khalif tait stirf Mohan ji an lever सिरोसे इरोनिस या लेफर सिरोसे यानी कि लेफर की बीमारी से इनका ध्यान हो गया.
1: शांता जी, जैसे कि सुना है मैंने कि उसे उस समय पे बड़े बड़े फिल्मों में, उस समय क्योंकि वे फिल्में बन रहा था तो राज कपूर का समय था, देवानंद का समय था, तो सबका अपना अपना और ग्रुप बन गया था, पर इन सभी में क्या ऐसा नहीं लिखा गया कि मदन मोहन जी ने खास इस सब से जुड़े हुए थे, ये अपना अपार्थ रहे पर सभी फिल्मों में ये अपना सहयोग दिए गए, ऐसा?
0: हाँ, जैसे कहते हैं ना, बैकग्राउंड में रहा पर भी जैसे फंडेरिंग था फिल्म का, और ये कलाकार लोग के एक फंडेरिंग था, तो ऐसे ही आगे बढ़ा. और सिर्फ राजकुमार जी जुड़े नहीं थे, हम भी जुड़े थे उन दिनों में. मुझे भी बहुत अच्छा लगता, आज भी अच्छा लगता है वो सब फिल्म देखने के लिए, राज कपूर के और देवानंद जी का, और उनका गाना जो है तो रोंगटे खड़ा हो जाता है.
1: बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि शुरू शुरू में जब मदन मोहन जी का और जो एंट्री लिए ना फिल्मी दुनिया में, तो एसडी बर्मन के साथ और श्याम सुंदर के साथ उन्होंने असिस्टेंट काम किए, फिर उसके बाद में अपना काम जब प्रारंभ किया तो कितने ढेर सारे और गीतों को बनाए, गीतों को कंपोज किए और जाकर के फिल्मों में रखे. पहले हम सब जब एलपी मिलते थे ना हर एक फिल्म में, उसमें एक फोटो रखे जाते थे कि ये लता का और मदन मोहन का, तो हमें अभी वो ख्याल आता है कि मुझे ये नहीं पता था ये किसका है ये फिल्म में कभी. मुझे तो लगता था कि जैसे कि अभी आपने हम सबको शुरुआत में बताए सुनाए,
0: जिम्मेदारियां
1: होता है प्रोड्यूसर का, और इस प्रकार से सॉन्ग डायरेक्टर का फोटो भी रखा जाता था जो एलपी के हुस पे, क्योंकि हर एक फिल्म में कितने ढेर सारे गाने होते थे.
0: पर कितने अच्छे से तुमने कहा ना कि ये लता जी के और ये फिल्म, जो फिल्म जिस फिल्म का ये गीत चलता था, तो जो खिलाड़ी उसमें था उनका पिक्चर तो यानी फोटो के तो बहुत बड़ा बड़ा दिखते थे, और जो हाल के बहुत सा बहुत ज्यादा उसमें काम किया तो उनका फोटो बहुत छोटे थे,
1: एक छोटा सा फोटो. बिल्कुल. सुनने वालों, इस बात को शायद आपको सुन को भी ख्याल आता होगा, और जरूर अगर आपके पास जो अभी प्लाट क्या कहते थे उसे एलपी और सिंगल हो तो जरा उस पे और कोशिश करके देख लेना, क्योंकि ये बस चंद दिनों तक देख सकते हैं आप.
0: और एलपी और
1: सिंगल होते थे,
0: सिंगल उससे पहले भी एक था,
1: एक हाँ जो ये था, एक था 45 तक, एक था 78 तक, और उससे पहले एक और था पर उसका नाम नहीं पता मुझे.
0: मेरे को पता नहीं, पर
1: हमारे सुनने वालों को शायद पता होगा जो उस समय अपने घर से जो पुराना कुछ, क्योंकि वो दीप लात वाला इट्स देकर है
0: क्लॉथ, या और हम लोग के पास भी था घर पे,
1: तो सो मात्रा. हाँ, तो वो कौन सा साइज रहा ये भी नहीं पता मुझे, यही पे ही था ना,
0: इसने कुछ है पता ना उतना ठीक से.
1: मुझे भी नहीं पता. हाँ, शांता जी यो, क्योंकि आप एक ही नाराजी और
0: हाँ, तो उसके बाद तक कैसेट आए, तो फिर सीधे आए, अब तो यहाँ यूट्यूब पर ये जो चाहते हैं देख लेते हैं. पर यूट्यूब पे ऐसा भी है कि अगर वो सब गीत जो है वो डाउनलोड करके नहीं रखेगा तो आप भी नहीं सुन पाओगे, तो हमको भी शुक्रगुजार करना चाहिए कि वो सब जो डाउनलोड करके और रख देते हैं हमारे खात आसान कर देते हैं,
1: तो हम लोग के भी आसान हो जाता है कि हम लोग कंप्यूटर पे और नाम रखते हैं और उसका गीत हम सबको सुनने को प्राप्त हो जाता है. सुनने वालों, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हूँ और बबली जी कुछ कहने वाले नहीं. शांता जी, आप जो आपका संदेश पूरा हो गया,
0: पूरा तो नहीं हुआ है, पर मैं कहना चाहती थी कि जब आपको पता है कि कोई के जन्म भी होता तो मृत्यु भी हो जाता है, पर ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे लोग और दिन भी रहते तो कितना अच्छा होता, पर क्या करें,
1: समय का खेल निराला है।
0: वही तो मैं यह कहना चाहती कि कैसे बता रही थी कि मदन मोहन जी की मृत्यु कैसे हुआ और कहाँ पर कैसे हुआ। तो जैसे हमने कहा इन नेखन तीन फैफ से तक ऑफ इन फैफ तक यार खलीफ ते स्थिर मोहन अन लेफन सीरोस।
1: तो ये लेफर का कुछ, क्योंकि उसके बारे में बताया गया है कि वो शराब का भी शिकार हो गए थे ना, तो शराब पीने से लोग कहते हैं कि लेफर खराब हो जाता है। और एक फिल्म भी बनाया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन बार बार ये शिकार करते हैं, कौन सा फिल्म में था?
0: मेरे ख्याल से सत्य पे सत्ता।
1: हाँ, सत्य पे सत्ता में, तो उसमें ये संदेश रखता है अमिताभ बच्चन की दारू पीने से लेवर खराब हो जाता है,
0: बहुत ज्यादा दारू पीने से लेवर खराब हो जाता
1: है। सही बात, आपने पूरा डायलॉग सुना दिया और सुनने वालों यही बात हुआ कि शायद मदन मोहन जो एक सोनखरौत आर्टिस्ट जो जा करके और उसका मृत्यु जो एन फाइव तक यार पे हो गई है, पर फिर भी आज तक दुनिया के हर एक देशों में उनका गीतों को सुना जाता है। बबली जी भी कुछ रखने वाले हैं।
2: मदन मोहन जी संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। गायिका बेगम अख्तर जी कहती हैं, बेगम अख्तर जी की गज़ल गायन का प्रभाव भी मदन मोहन जी की बंदिशों में सुनने को मिलता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मदन मोहन जैसी गज़लों की रचना करने में कोई फिल्म संगीत का सफल नहीं हुआ है। मदन मोहन की कुछ लाजवाब गज़लें हैं, उनको यह शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। आज सोचा तो आंसू भर आए, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। इसी में प्यार की आरजू और हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ प्रमुख हैं।
0: जिंदगी जीना एक कला है, जिसने ये कला सीख लिया वो जिंदगी जीत लिया। सुने वालों, आपने सुन रहे थे फंकारों की दुनिया। स्वीकार कीजिए शांता की, नमस्कार।

नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। सुनने वालों, यहाँ तलक जो कार्यक्रम फनकारों की दुनिया हम सब आपके लिए रखे, हमारे साथ दिए बबली आसरा जी और शांता खेमाई जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूँ कि जरूर इस कार्यक्रम को सुनकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: सुनने वालों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और जिसमें जॉनी भाई, भाई गंगा जी और भाई सेतु जी भी सहयोग दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भाई जॉनी जी भी आज इतना हम लोग को सेवा किया, क्यों ना आप अपने पत्नी के लिए एक गीत को मांग करो। जॉनी भाई,
1: भैया संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें मौका दिए आज माइक्रोफोन के सामने बुलाने के लिए। और साथ ही साथ भैया गंगा भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, चना घुघरी खा रहे हैं, और अभी अभी भैया यूसुफ भी यहाँ पे है, डोक्सा रोटी तुरान है, और उसके जो मशुका है डोक्सा बना इसे भैया भैया संजय जी, और खाना पीना भैल है, और उसके उसके मशुका का नाम है हमारे ख्याल से शीला का इतना ढेर लोगों नाम ले लिए, कभी भुलाई से किला उसे तो शीला जी आपके
0: सवाल ये था जॉनी भाई कि आप भी कुछ खाना पीना के बना कर लेकर आए हैं स्टूडियो में, और क्यों ना आप अपने पत्नी के लिए, क्योंकि यूसुफ भाई तो अभी कुछ चलवाने वाले हैं शीला जी के लिए।
1: अच्छा, तो मेरा बीबी ने आज लोग को पता चला, वैसे तो लोग जानते थे मैं कुंवारा हूँ लेकिन ऐसा किया कि आप लोग जान गए कि मैं एक शादी से वाला हूँ भैया गंगा।
2: हाँ, हम सोच रहे ले। अच्छा, हम अपने छोटकी के बहुत बहुत धन्यवाद देला कि जो चटनी उन्होंने बनाए वह क्या अव्वल दर्जे का चटनी था। एक प्रस्ताव भैया जॉनी ने रखा कि बताइए कि चटनी किस चीज़ की बनी हुई है, तो मैं तो नहीं बना सका बता सका क्योंकि मैं चटनी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो पता चला बीरबल ने बताया हाँ बीरबल ने बताया यानी भैया सूर्य भगवान दीन की प्रेम की चटनी है। दरअसल मैं भी प्रेम की चटनी कभी नहीं खाया है, बहुत स्वादिष्ट था भाभी जी, बहुत बहुत सॉरी चुटकी।
1: आलू कुछ बांधती वही बनाया
2: रहा। आलू कुछ, अरे वाह क्या बात है, आलू कुछ बांधती क्या,
1: हम लोग के स्पॉन्सर करें।
2: हाँ, हम लोग हमने बहुत आलू कुछ बांधती खाए हैं लेकिन बहुत स्वादिष्ट था, झूठ नहीं बोलूँगा।
1: तो धन्यवाद भैया गंगा। तो आप, मैं तो जानते हैं कि वहाँ रेडियो के करीब वो बैठा हुआ है, और वो मुझसे भैया संजय आज कहा कि आज हमारे गनवा न चली का, तो आज भैया संजय ने मौका दे दिया, तो चला दो एक गीत भैया संजय।
0: जरूर जॉनी भाई, जरूर एक गीत जो हमने चुनकर अभी रखे है, तो क्यों ना एक पंकज उदास का गीत के और हम सब बढ़ते,
1: एक लवली सॉन्ग चला दो।
3: ताज़ा गज़ल पेश खिदमत है, ये गज़ल आपको ज़रा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

0: सुनो वालों, ये गीत का मांग किए गए हैं जॉनी भाई, जो इस समय यहाँ पर, हाँ गंगा जी, इस पे ये गीत जो उन्होंने अपने प्यारी पत्नी के लिए मांग किए
1: और मेरे छोटकी के लिए,
0: आपके छोटकी लिए। और जॉनी भाई, ये मांग किया गया गीत जो कम से कम थोड़ा से प्यार भरी रूप में अपने पत्नी को और कुछ संदेश पठाओ।
2: हाँ भैया संजय जी, ने जिंदगी से चटनी खाते हैं और चटनी खाते खाते जो जीप है चटक चटक करते हैं, तो अपने बीवी के यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके लिए गीत हमने चलाया है। हमें यही आशा उम्मीद कि उसको अच्छा लगा होगा। एंतोस्ट्रक्स
0: भाई जी ने कहा। और दूसरा गीत का मांग किया गया है दोस्तों, तो वो है हमारे भाई यूसुफ जी। यूसुफ जी जो इस समय पता नहीं क्यों माइक्रोफोन के सामने बैठ गया है, पर भाई यूसुफ जी आप ये गीत किसके लिए मांग किए?
3: ये एक स्पेशल हमारे मशूका के लिए,
0: स्पेशल आपकी मशूका के लिए मांग किए गए है, और उस पर आप जरूर कुछ और कहना चाहेंगे।
3: भाई कि वो तनी से खाना पीना हम लोग के खाते नहीं आ रही कल कर दी से,
0: खाना पीना रेखल कर दी से। पर मैं देख रहा हूँ गंगा जी भी कुछ कहने वाले हैं।
1: हाँ जरूर भैया संजय, हम शीला के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और सभी जितनी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कर्मचारी हैं। बहुत स्वादिष्ट रोटी था, डोसा था और न जाने क्या क्या, बहुत अच्छा लगा। शीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, और जितनी मेहनत आपने की परमात्मा आपको अवश्य फल देगा, वो तो ज़रूर है। ठीक है भैया संजय?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पर गीत जो मांग किए गए हैं यूसुफ भाई के ओर से अपनी प्यारी प्यारी पत्नी के लिए, वो हम चला रहे हैं। इस समय प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

0: महबूब मेरी महबूबा, ये सुंदर सा गीत का मांग किए गए यूसुफ सेतु जी के ओर से। और भाई यूसुफ जी, जो आपने ये सुंदर गीत को मांग किए, ज़रा कुछ और, अभी कभी अभी तो मैंने कहा था कुछ और कहने को, पर मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाए आप। पर इस बार आपको मौका है अपने मशूका के लिए कुछ और सुनाने के।
1: या एक बार हाथ लग बदान कर कि हम लोग कहते नहीं खाना पीना से सेवा कर जिसे एक सीधा थेल फेल में से लेकर अब खेत एक हीर बे हाथ लग बदान कर ना मशूका।
2: एक अपन फ्राग
1: या
2: तू कहे मशूका के नमोल वे तो रोवे लगे हैं तो और आंखी में से हर हर हर हर पानी चुए जैसे वाटरफॉल मारियम बे रख के
1: लिफ्ट के तराना
2: तो दोस्तों ये गीत यहाँ से हम और चलाए हैं। और भैया संजय जो फेशिस्तान में रहते हैं, अनाउंस साथी ही रेडियो फाहुन की, जिसका प्रोग्राम आप लोग हर सुबह सुनते हैं, लेकिन आज भी आज संजय कुछ प्यार के मूड में है और अपने जो उसको पातर का जो मोच है, उस मोच को उसने यानी छतरी के और यानी ऊपर चढ़ा दिया है। कानन की आँच वो इतनी प्यार में मगन है कि वो कह नहीं सकता, इसीलिए उसने कहा कि जॉनी भाई आप ही कुछ कह दो। तो इस प्यार में और संजय ने अपनी पॉपी को, हाँ पॉपी बबली के लिए एक फेवरेट सॉन्ग को मांग किया है। तो यहां से हम सब मिल के चलाते हैं, भैया गंगा यूसुफ और हम सब मिल के चलाते हैं, और ये संजय के तरफ से अपने पॉपी और अनाउंसर साथी भी है बबली के लिए।

0: दोस्तों, और बड़ी नसीब वाला है, और कौन है बड़ी नसीब वाला है, वो दीदी बबली है या संजय है? लेकिन मेरे ख्यालों से दोनों ही नसीब वाला है, और एक दोनों एक दूजे के लिए बहुत बहुत प्यार जताते हैं। रेडियो फाहुन की जर्सी बबली के लिए इस गीत को मांग किया है, और यहां से और दिल से बहुत बहुत प्यार बजाते हैं।
1: सुनो, कहीं कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया जॉनी भाई? ज्यादा कहने वाला तो भाई भाई है। जो आज ये खुलासा हुआ कि नाटक में भी ये भाई बहुत चतुर है, और अभी आप भी सुने कि बातचीत करने में इसको कोई पा नहीं पा सकता है। भाई हमारे साथ तब हमारे सीनियर गंगा जी भी उपस्थित है, तो गंगा जी इस पे आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: भैया संजय जोश में आकर एक श्रीमती ने तार की, तो श्रीमती जोश में आ गई क्योंकि वो सुन रहे थे संजय की आवाज, मेरी आवाज, युग सर की आवाज,
3: और भैया जॉनी की आवाज जो इतनी अव्वल दर्जे का है। तार की और एक गाना की ख्वाहिश रखी है, और वो गीत चलिए भैया संजय आपको सुनाएंगे। लीजिए संजय आपके लिए वो गीत सुना रहा है इस तरह से। भैया संजय चला दो।
1: चला देता हूँ वही गीत जो मांग किया गया है।
3: हाँ।

0: दोस्तों इस गीत को मांग किया है और सब अनाउंसर साथी के लिए इस गीत को मांग किए है। और अगर भी आप भी तार करना चाहते हैं एक गीत को को तान करने को वन वे मुतोकरार है इसमें से। और भैया संजय उसका नंबर आपको देगा?
1: जरूर मैं नंबर देंगे क्योंकि दो दो नंबर है जॉनी भाई, और पहला है एक गंगा जी कहते हैं एक काला नंबर है और एक सफेद वाला नंबर।
0: काला देना काला।
1: तो काला नंबर जो है तो वह है 0 तक, क्योंकि टेलीफोन काला कलर का है इसी कारण गंगा जी उसका नाम कालू राम रख दिया है। तो 0 तक 3 6 2 2 0 7 7। तो आप जरूर अगर आप अपने लिए और अपने मशूका के लिए गीत मांग करना चाहते हो तो जरूर मांग कर सकते हो, आपको ये मौका दिया जा रहा है। हमारे अगला गीत जो इस समय मांग किए गए हैं, किसी के लिए मांग किए गए हैं, स्पेशल समवन स्पेशल कहते हैं, तो उनके मांग किया गया गीत को हम चलाने के लिए और इस समय प्लेयर पे रख चुके हैं।

कहते हैं दिल यहाँ है लेकिन जान कहाँ है, दिल यहाँ है जान वहाँ है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये भैया गंगा कहते हैं। और वो समवे स्पेशल कौन है, वो कौन है दोस्तों? अगर जो आपको पता नहीं है तो यहाँ से हम कह देते हैं कि दिल यहाँ है और जान करला लगे है। और ये करला कौन है? ये वही जान है जिस जान को गंगा ने बहुत ही सांप से अपने दिल के पिजड़े में जोर से बांध कर रख दिया है और मांग किया है करला और गिरधारी के लिए दोस्तों। और यहां पर हम देखते हैं इस वक्त गंगा के आंखों में भी पानी भर चुका है, जैसे अभी भैया यूसेफ भी यहां पर हांदुक से पूछते हैं, अपने दोनों मशूका को याद करते हैं और वहां किसी ने अपने पोपी को याद करते हैं। तो सबके लिए यहां से रेडियो फाहून के माध्यम से आप सबके बहुत बहुत प्यार। एक मशुका यहां पे कहते हैं जो डोक्सा बनाकर भेजा है, वो कहते हैं यूसेफ तुम क्या सोचते हैं, सिर्फ डोक्सा हम जाते बनाने को, सिर्फ चना हम जानते हैं बनाने को, हमें प्यार करना भी आता है, ना सिर्फ चूल्हा फूकने आता है लेकिन प्यार करने भी आता है। और जो प्यार हम आपसे करते हैं सारी दुनिया में और किसी नहीं करेगा, ये हमारा वादा है। और ये वादा ओठों से नहीं दिल से हम करते हैं। तो इब्न बरूक सिसिलानी अपने जानेमन अपने दिलरुबा यूसेफ सेतु के लिए इस गीत को मांग करते हैं।

0: और ये सपना जो है वो कौन सच करेगा, ये सपना कौन सच करेगा भैया संजय, आप बताइए।
1: ये सपना सच करने वाले हमारे गंगा जी, हमारे सेतु जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, और ये सब पुराना गाना जो जिसमें माला सिन्हा और मनोज कुमार ने काम किया है, अनहेल अवलित, और कौन फिल्म से निकाला गया है ये गीत को यूसुफ भाई?
2: अपने हुए पराये, फिल्म
1: अपने हुए पराये से निकाला गया। और जॉनी भाई, मेरे ख्याल से अभी आपने तो कुछ ज्यादा ही कह दिए हमारे लोग के बारे में,
0: लेकिन
1: आप भी एक गाना को मांग किए हैं, और मेरे ख्याल से
0: अभी तो चलेगा, लेकिन जो अभी हमने कहा है कि जो सपना सच करेगा, ये सपना जो सच करेगा वो है शीला इपन बेरोख ने, और यूसुफ के लिए उसने मांग किए थे ना भैया यूसुफ, तो वो सपना जो उसका है आप तो सच करते हैं, वो तो मुझे मालूम है और उसमें कोई शक नहीं है, जब सोना के दांत चमक जाते हैं तो उसमें आप जान जाओ कि सपना जरूर सच होगा। तो यहां पे एक और फोन आए हैं, और किसी ने किसी के लिए मांग किया है, और ये गीत को वो अपना नाम नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ कहते हैं कि कोई गीता के लिए चला देना। तो यहां से ये तार हम चलाते हैं, यानी गीत को चलाते हैं।
1: तो सुनने वालों, पंख हो तो उड़ आते, यही गीत हम गंगा जी भी कुछ कहने वाले हैं।
3: मेरे पेट में खलबली हो रहा है कि ये कौन किसके लिए चलाया जा रहा है।
1: खलबली हो रहे है ये कौन और किसके लिए ये चलाया जा रहा है, चलो वो बाद में इसके बारे में पहले सुन लेते हैं गीत में संदेश क्या है।

0: तार आया है मफरू गीता जी और किसी के लिए इस गीत को मांग किया। दोस्तों आप भी तार कर सकते हैं और हमारा फोन नंबर तो संजय आप बताते हैं। और अभी हम लोग एक तार और आ जाएगा तो हम सब उठा लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ गंगा जी कुछ बोलना चाहते हैं अब और आपको।
1: बस बात यही है भैया संजय, भैया जॉनी और भैया यूसुफ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओवर लेख था, ओवर लेख के बाद हम लोग कुछ भोजन पानी किए और सब कुछ यहाँ मौजूद था। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने वाला श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो थोड़ी देर के लिए लाइव कार्यक्रम में तार किए हैं और कार्यक्रम सुने हैं। भैया संजय हैं
2: कहने के यही है गंगा जी, जो बात यह है कि आज कुछ पुराने गीतों के साथ हम सब कुछ और कुछ फरमाइशें पेश किए ना। जॉनी भाई जो फरमाइश पेश करने में सबसे तेज होते हैं, तो जॉनी भाई क्यों ना एक गीत और अपने पत्नी के लिए आप और फरमाइश करते हैं।
0: क्यों नहीं भाई संजय, मेरा पत्नी जो है तो हम रही हैं और उसके लिए जरूर हम दूसरा गीत को यहाँ से मांग करते हैं और वो भी बहुत ख्याल करते हैं हमार। तो मरई के छोटू सूरज बली के लिए यहाँ से एक बहुत प्यार भरी गीत यहाँ से हम चलाते हैं। मुझे तो मालूम है कि वो एक है जो हम लोग के रेडियो भैया संजय 24 घंटा वो सुनता है और वही है जो कभी कभी हम लोग के रेडियो पे प्रॉब्लम हो जाता है, सेंडिंग नहीं रहते हैं कभी कभी या कुछ हो जाता है तो वो तुरंत तार करके बोलते हैं ये रेडियो में कुछ गड़बड़ है, रखलाम ना भैले देत ना भैल दुसदार वे लेक हार नामस दे हेल तीन फर रेडियो फाहौन बदंक। और हम जानते हैं कि इस वक्त वो रेडियो सुन रहा है और वो हमारे तरफ से बहुत बहुत प्यार उसके लिए।
2: तो सुनने वालों, जैसे कि हमारे भाई जॉनी जी ने कहा कि मराइका जी के लिए ये सुंदर सा गीत जो ओकन अवलित फन्ने खती फिरन सस्तक, जिसमें शमी कपूर जी ने और अपना कला से प्रदर्शन दिए है, का यानी कि यूसुफ भाई इसका मतलब क्या है?
3: कश्मीर की कली नेखती फिरन सस्तक और शर्मिला टैगोर के साथ ये फिल्म पहला फिल्म रहा शर्मिला टैगोर का।

0: सुनो लो ये गाना जो निकाला गया का यानी कश्मीर की कली, फिल्म जिसमें शमी कपूर ने काम किए, और अभी आप कह रहे थे
1: शर्मिला टैगोर
0: ने भी काम किए। अगला गीत जो मांग किया गया है,
2: तो ये गीत जो चलाए हैं वो अपनी यानी मराई के छोटू के लिए हमने चलाए हैं, चांद सितारे चेहरा और जुल्फों का रंग सुनहरा। तो उसके बाद हम अगला यानी कि लास्ट गीत की ओर जाते हैं। तो अभी ने हमने कहा है कि दिल कहाँ है और जान कहाँ है, दिल कहाँ है और जान कहाँ है, मुस्कान कहाँ है और हसीन कहाँ है। तो दिल जो है तो यहां भैया गंगा के पास है, और जान कहां है तो कारला के पास है, कारला गिरधारी के पास है। तो कारला गिरधारी बहुत रेडियो के करीब, और कारला गिरधारी और जाने मन अपनी गंगा को, अपनी गंगा में प्यार के गंगा में उसको बहा रहा है और लेकर जा रहा है। और गंगा अपनी अपनी करला गिरधारी की और उसकी गंगा में, प्यार के गंगा में और बहती चला जा रहा है। और एक गीत को मांग किया है अनाउंसर साथी गंगा ने, अपनी अपनी दिलरुबा गिरधारी, करला गिरधारी के लिए। तो आओ सुना जाए क्या है।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बात तो सही है कि जिंदगी हर कदम एक नया जंग है और इसे हमें लड़ के समझ के और आगे ही बढ़ना है।

0: वीकेंड।
1: हाँ हाँ, सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

हमारा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कंटेन 1-5 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज में।

प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को

जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे, क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे, क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी की आवाज़ में।

सुरैया जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

फातिमा बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आई ना मेरा दोस्त? और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन, नेखन तीन नेखन फेफ तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दोस गोल्स इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बारे आपके लिए फिल्म आर पार से नेकंतीन फिल्म फेफ तक के शमशाद बेगम जी की आवाज़ में

Title song film aar paar 1954 ke picturize kiya film Shamshad Begum ji ki awaaz mein sune. Star cast isme hai Shama, Gurudutt, Shashikala aur Kumkum ji. और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो।

फन फन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान। सपने तो हम सबको जरूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी।

सुनने वालों, पिछली बारी मैंने आपको जानवर के संबंधी कुछ शकुन अपशकुन के बारे में बताया था। अब मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाती हुई कुछ और बातें आपको बतलाऊंगी।

अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और जानवरों के बारे में आपके लिए बतलाऊंगी सुनने वालों। अब मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। गाय, बकरी संबंधी शकुन, दाई और मिले लाभदायक, बछड़े को दूध पिलाती मिले बहुत शुभ सफलता, बाई और हुंकार सुने अत्यंत सिद्धि, धन संतान स्त्री संपत्ति की प्राप्ति सुलभ है। अगर गायें मार्ग में जाते हुए मिले तो अनिष्टाकारी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि। पाँव के खुर से भूमि खोदें, यदि अपने पाँव से वो मट्टी खोदें तो उसका जटिल रोग के चक्र में या गड़ा धन मिलेगा।

इसका मतलब है सुनने वालों कि यदि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमारी दाई और हमें गाय दिख जाए तो उसका बहुत लाभ होता है। अगर बछड़े को दूध पिलाती गाय हमें मिल जाए तो बहुत शुभ सफलता मिलती है। अगर गाय हमारे सामने आ जाए और हुंकार सुने उसकी, यानी वो कुछ ऐसे बोले, तो अत्यंत सिद्धि, धन संतान, स्त्री संपत्ति की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और अगर रास्ते में जाते हुए गाय मिल जाए तो धन हानि, स्वास्थ्य हानि होती है। और पाँव अपने खुर से वो मिट्टी खोदे तो उसका मतलब है जटिल रोग के चक्र में या गड़ा धन, यानी कि हमें जो रोग है उसके

अगर रात्रि में कर्कश स्वर में बोले भय सूचक, मादा के ऊपर मक्खियां बैठी हो वर्षा का सूचक, प्रसन्नता युक्त हुंकार भरे लाभदायक। कुछ का मत है कि भैंस दर्शन का वही फल है जो गाय दर्शन का होता है, यानी मृत्यु का भय, रोती दिखाई दे मृत्यु की संभावना।

इन सब बातों का मतलब है सुनने वालों कि अगर रात में गाय अजीब सी आवाज़ में बोलें तो उसका भय का सूचक यानी कि वो डरावने वाला होता है। मादा के ऊपर मक्खियाँ बैठी हों, यदि गाय के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं तो उसका मतलब है कि बारिश आएगी, वर्षा होगी। प्रसन्नता युक्त हुंकार भरे, अगर समझ लो कि थोड़ी हंसी वाली वो हुंकार भरती है तो वो लाभदायक, उससे लाभ मिलता है। और कुछ का ये मत है कि गाय भी भैंस की तरह अगर दर्शन दे और उसका मतलब है कि मृत्यु का भय, और अगर गाय रोती दिखाई दे तो मृत्यु की संभावना है सुनने वालों।

अब गाय के बाद हम चलते हैं हाथी की ओर। हाथी अगर सामने से आता दिखाई दे तो शुभ लाभ, यदि उपरोक्त दाई ओर हो उपरोक्त से कम शुभ, यदि सामने से सफेद हाथी आए सर्व सुख की प्राप्ति, दाएं दांत पर सूंड रखे हुए हो बहुत लाभकारी, बाएं दांत पर सूंड रखे हुए हो विशेष फल नहीं, मंदोत मत दशा में चलता अत्यधिक लाभदायक, नदी के किनारे को खोता शको नष्ट कर देता है, सहसा ही भगन गति हो जाए या रुक जाए तो भय कारक।

इन सब का ये मतलब है सुनने वालों कि अगर हाथी सामने से आता दिखाई देता है तो उसका हमें शुभ लाभ प्राप्त होता है, और यदि दाई ओर से आता दिखाई दे तो उसका कम लाभ मिलेगा। और अगर सामने से सफ़ेद हाथी आए सर्व सुख की प्राप्ति, वैसे तो सफ़ेद हाथी कमती दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी सफ़ेद हाथी दिखाई दे जाता है। और हाथी अगर दाएं दांत पर सूंड रखे हुए हो तो बहुत लाभ होता है सुनने वालों, और बाएं दांत पर सूंड रखे हुए तो विशेष फल नहीं होता, उसका कमती फल मिलता है। और मधु मत दशा में चले तो बहुत लाभ होता है। नदी के किनारे को खोदता, यानी अगर नदी के किनारे वो मिट्टी को खोद रहा है तो सब शकुन नष्ट कर देता है। सहसा ही मगन गति से चलता हुआ दिखाई देता है तो उसका मतलब है भय का कारण।

अगर हाथी सहसा तीव्र गति से चलने लगे तो भय का सूचक, समय पर ना जागे स्वामी के लिए हानिकारक, स्वेच्छा से वृक्षों का मंथन करे राष्ट्र के लिए विजय, दांत दांत का मूल मगन हो

जाए। स्वामी को कष्ट, बाएं दांत का बीच भाग भगन शत्रु को नष्ट करे। यदि घुटने टेक दे तो पराजय, अप्रत्याशित रूप से सूंड ऊंची करे कार्य में सफलता। इन सब का मतलब है सुनने वालों कि अगर वह तेज गति से अगर हाथी चलता हुआ दिखाई दे तो उसका भय का सूचक कि हमें डर लगता है वो देख के। समय पर ना जागे अगर हाथी तो जो उसका स्वामी होता है तो उसकी हानि हो जाती है। अगर वृक्षों का मंथन करे, अगर वृक्षों को देखे अच्छे से तो राष्ट्र के लिए भेजे। दांत दांत पर मूल मगन हो तो उसके स्वामी को कष्ट होता है। बाएं दांत का बीच भाग मगन तो शत्रु को नष्ट करता है, उससे शत्रु का नाश होता है। और यदि हाथी घुटने टेक दे, घुटने के बल बैठ जाए तो पराजय, अप्रत्याशित रूप से सूंड ऊंची करे तो कार्य में सफलता मिलती है। सुनने वालों अब हमें गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, अभी जो आपने ये गीत सुना, ये गीत था फिल्म लव स्टोरी से, और इसमें कलाकार थे कुमार गौरव, विजेता पंडित, और आप सबको पता है ये फिल्म बहुत सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुई थी।

तो मैं आप सबको बता रही थी कि जानवरों के बारे में, कि अगर हमें जानवर रास्ते में मिल जाए या वैसे देखें तो उसके शकुन और अपशकुन क्या होते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों, अब हम चलते हैं घोड़े की तरफ। यदि हमको घोड़ा रास्ते में दिखाई दे जाए या यात्रा पर जा रहे हैं दिखाई दे जाए तो उसका क्या असर होता है। यदि सफ़ेद घोड़ा अपने स्वामी सहित सामने दिखाई दे तो शुभ, लाल या अन्य सुशोभित घोड़ा मिले तो शुभ, काला घोड़ा मिले तो शुभ नहीं। बाएं पांव को पेट से लगाए अशुभ बाधा, काला दाएं पांव को बहुत शुभ, बाईं ओर हिहिनाए या दाएं पांव से धरती खोदे बहुत शुभ, उच्च पद की प्राप्ति। बाईं ओर हिहिनाता घोड़ा दिखाई दे तो बहुत शुभ, सम्मान प्राप्ति।

इन सब बातों का ये मतलब है सुनने वालों कि अगर सफ़ेद घोड़ा अपने स्वामी की आता हमें दिखाई देता है तो उससे हमें शुभ लाभ होता है, यदि लाल घोड़ा दिखाई देता है तो उससे भी शुभ लाभ प्राप्त होता है, अगर काला घोड़ा दिखाई दे तो वो शुभ नहीं है। बाएं पांव को पेट से लगाए अगर घोड़ा हमें दिखाई देता है तो वो भी अशुभ माना जाता है सुनने वालों। काला दाएं पांव, अगर काला घोड़ा दाएं पांव के साथ आए तो बहुत शुभ होता है। बाई और हिनाए या दाएं पांव से धरती को खोदे तो बहुत शुभ और हमें उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर घोड़ा बाई और हिनाता और अपने अंग को खुल जाए यानी खारिज करे तो उससे बहुत शुभ और हमें सम्मान की प्राप्ति होती है।

अगर काले रंग का घोड़ा बाईं ओर से आता दिखाई दे तो अशुभ नहीं, परंतु सामने या दाईं ओर से घोड़ा आए तो अशुभ है। लाल रंग का घोड़ा दिखाई दे तो राशि सुख प्रदान करे। अगर पीले रंग का घोड़ा सामने आ जाए तो राशि सात्विक सुख। अगर सफ़ेद रंग का घोड़ा सामने आ जाए तो सात्विक सुख। अगर काले रंग का घोड़ा सामने आ जाए तो तामसी सुख। बिना मारे जो घोड़ा कई बार मल मूत्र त्याग करे, टेढ़ा चले, बेगर चले, शुभ फल नहीं देता। सुनने वालों, भक्ष पदार्थ, मध्य पदार्थ और लगाम प्रसन्न होकर ग्रहण करे और दक्षिण पार्श्व की ओर दृष्टि रखे तो शुभ फल की सिद्धि मिलती है। सुनने वालों,

काले रंग का घोड़ा हमें बाई ओर से सामने दिख जाए तो उसका मतलब है कि वो अशुभ नहीं है, वो शुभ ही माना जाता है। परंतु यदि दाई ओर से घोड़ा आता दिखाई दे तो अशुभ माना जाता है सुनने वालों। और अगर लाल रंग का घोड़ा सामने से आता दिखाई दे तो हमें राशि सुख यानी ऐशो आराम सुख प्रदान होता है सुनने वालों। अगर पीले रंग का घोड़ा सामने आ जाए या सामने से आता दिखाई दे तो राशि सात्विक सुख प्राप्त होता है। अगर सफ़ेद रंग का घोड़ा हमें दिख जाए तो सात्विक सुख मिलता है, और काला घोड़ा सामने आ जाए तामसी सुख मिलता है। अब बिना मारे अगर घोड़ा हमारे और आए तो बहुत शुभ फल नहीं देता सुनने वालों।

अब हम चलते हैं गधे की ओर। आप सबको तो पता है कि गधा कौन है। अगर गधा हमें बाई ओर बोले तो कार्य सिद्धि, बाई ओर रुके या शरीर को खुजाता हुआ बाई ओर से आए तो सब प्रकार का लाभ संभव। पीठ पीछे रेंगे या जोर से रेंगे यानी बोले, सब प्रकार के कार्य सिद्ध सामने दिखाई दे, असिद्धि की सूचना। सामने खड़ा पांव को फेंके लड़ाई का संकेत, सामने प्रस्त लड़े बहुत दुखदाई। सामने लेटा हुआ या सिर घुनाता हानिकारक। दाई ओर खड़ा हो अशुभ, दाई ओर से आपकी तरफ आए अस्मिक कष्ट। सामने से बाई ओर आता मिले अशुभ नहीं होता।

सुनने वालों, जैसे हम कहीं जा रहे हैं या यात्रा पे जा रहे हैं तो सामने से एक गधा या कई गधे बोले तो हमें कार्य, हमारे जो भी कार्य हैं सब सिद्ध हो जाते हैं सुनने वालों। और बाई और रुके या शरीर को खुजाता हुआ दिखाई दे तो सब प्रकार का लाभ संभव है, सब तरह से हमें लाभ प्राप्त होता है सुनने वालों। पीठ पीछे रेंगे या जोर से रेंगे, कि अगर हमारी पीठ के पीछे वो जोर से बोलता है तो सब प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। अगर सामने से आता दिखाई दे तो असिद्धि की सूचना, तो वो ठीक नहीं है सुनने वालों। सामने खड़ा पाँव को फेंके तो इससे लड़ाई का संकेत है कि किसी से लड़ाई होगी। अगर गधा सामने प्रस्त लड़े, किसी के साथ लड़ता है गधा, अरे एक गधा दूसरे गधे से लड़ता है, तो इसका मतलब है बहुत दुखदायी, कि बहुत दुख आने वाला है। अगर सामने लेटा हुआ या सिर खुजाता घोड़ा गधा दिखाई देता है तो बहुत हानिकारक होता है सुनने वालों। अगर हमें दाई और खड़ा मिलता है गधा तो वो अशुभ, वो भी शुभ नहीं माना जाता, बहुत अशुभ माना जाता है। अगर दाई ओर से आपकी तरफ आए तो वो भी एक तरह से कष्ट प्राप्त होगा हमें। सामने से बाई ओर से आता गधा मिले तो उसका मतलब भी हमें अशुभ प्राप्ति होगी।

अगर गधा हमें दाई ओर आता मिले तो बहुत कष्टकारी, दाई ओर हटता हुआ चला जाए अल्प विपरीत रहे, दाई ओर आता हुआ पीछे चलता जाए कम हानि, दाई ओर आता हुआ एकदम पीठ पीछे आए अत्यंत खराब, मैथुन करता दिखे यात्रा में सफलता। इसका मतलब है सुनने वालों कि अगर गधा हमें दाई ओर सामने से दिखाई दे तो बहुत कष्ट मिलेगा, दाई ओर हटता हुआ चला जाए तो अल्प विपरीत रहे, दाई ओर आता हुआ पीछे चलता जाए तो हमें बहुत थोड़ी सी हानि होगी, ज़्यादा नहीं, और दाई ओर से आता हुआ एकदम पीठ पीछे आए तो स्थिति अत्यंत खराब की ज़्यादा खराब होगी। मैथुन करता दिखे तो इससे यात्रा में सफलता मिलती है सुनने वालों।

ये है आप सबका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेकर आता है, जिसे आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अब अपने गीत की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

सुनने वालों, जो आपने ये गीत सुना, ये बहुत फिल्म हिट रहे, इसमें काम किया था राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर ने। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। मैं आप सबको बता रही थी गधे के बारे में, बता चुकी सच, अब आगे बताऊंगी आपको सुअर के बारे में।

यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं और सामने से हमें सुअर आता दिखाई दे तो वो शुभ माना जाता है। भीगा कीचड़ में सना हुआ सुअर दिखाई दे तो शुभ होता है। यदि कीचड़ सूख गई हो तो अशुभ। बाईं ओर दिखे सफलता, प्रवेश करते समय दाईं ओर दिखे लाभ। बैल अथवा सांड अगर जाते हुए हमें रास्ते में दिखाई दे तो बाईं ओर सींग अथवा खुर से खोता तथा दाईं ओर अन्य चेष्टा करते देखे, आधी रात को बोलता दिखे, अपनी तरफ से दाईं तरफ आता दिखाई दे तो ये सभी शगुन शुभ माने जाते हैं। सुनने वालों, इन सब का अर्थ है सुनने वालों कि अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं और हमें सूर्य सामने से आता दिखाई देता है तो बहुत शुभ की प्राप्ति होती है, हमें शुभ लाभ मिलता है। अगर भीगा कीचड़ से सना हुआ अगर हमें दिखाई दे वो भी शुभ माना जाता है। सुनने वालों, यदि कीचड़ लगा है लेकिन सूख गया है तो वो अशुभ माना जाता है, तो उससे हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर बाईं ओर से सूअर आता दिखाई दे तो इसका मतलब है हमें सफलता की प्राप्ति होगी, हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और यदि कहीं हम जा रहे हैं और सामने से सूअर आता दिखाई दे तो हमें बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, और यही चीज़ बैल और सांड, यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं और हमें सामने से आता दिखाई दे, अपने सींग और खुर से मिट्टी को खोदता है और आधी रात को बोलता है और अपनी बाईं तरफ से दाईं तरफ देखता है तो ये जितने भी शगुन हैं सब शुभ माने जाते हैं। सुनने वालों,

मैं आप सबको जानवरों के बारे में बता रही थी कि अगर हम यात्रा पर जाते हैं या वैसे ही हमें जानवर दिखाई दे तो उन सबका क्या लाभ मिलता है या क्या कष्ट होता है। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी हिरण के बारे में, यानी मृग के बारे में। यदि हमें हिरण विश्व संख्या से मिले बाएं से दाएं आए तो सफलता काले रंग का अधिक शुभ लाभ माना जाता है। शरीर खुजाने लगे थिरके यात्रा स्थगित कर दें, मल अथवा मूत्र का त्याग करें, भय की सूचना सामने आकर खड़ा हो जाए असफलता, पीठ पीछे दिखे शुभ समाचार, सामने जाता हुआ दिखे यात्रा में सफलता, प्रदक्षिणा करके कोई हिरण वापस घूम कर दिखे अर्थ लाभ की सूचना, रति क्रिया करता हुआ दिखाई दे विजय प्राप्ति।

इन सब बातों का ये मतलब है सुनने वालों कि हिरण हमें अगर ज़्यादा संख्या में इकट्ठे झुंड में दिखाई दे और तो हमें सफलता मिलती है। काले रंग के हिरण ज़्यादा शुभ माने जाते हैं सुनने वालों। अगर हिरण शरीर खुजाने लगे और थिरके तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, तो यात्रा पर नहीं जाना चाहिए सुनने वालों। अगर हिरण मल त्याग अथवा मूत्र त्याग करे अगर वैसे हमें दिखाई देते हैं तो उसका मतलब है कि भय की सूचना, कि हमें कोई अच्छी सूचना नहीं मिलती। अगर हिरण सामने आकर खड़ा हो जाए तो हमें असफलता की प्राप्ति होती है। अगर हिरण पीठ पीछे दिखाई दे तो शुभ समाचार मिलते हैं सुनने वालों। अगर हिरण सामने जाता हुआ दिखे तो यात्रा में सफलता मिलती है। अगर हिरण प्रदक्षिणा करके कोई हिरण वापस घूमकर देखे तो अर्थ लाभ की सूचना मिलती है। रत्ती क्रिया करता हिरण दिखाई दे तो हमको विजय की प्राप्ति होती है, कि हम विजय की ओर बढ़ते हैं सुनने वालों।

अब हम आगे बढ़ते सुनने वाले लोमड़ी। आप तो सब तो जानते हो कि लोमड़ी बड़ी चलाक जानवर होता है। अगर लोमड़ी हमें यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे या रास्ते में मिल जाए, अभीष्ट की सिद्धि बाई अथवा दाई ओर से आ जाए सर्वदा शुभ। दाई और काली पूंछ वाली लोमड़ी मिल जाए कार्य में सफलता। सम सफेद सम जीविका नौकरी मिले, किंतु लड़ाई आदि करती दिखे तो पराजय होती है। इन सब का ये मतलब है सुनने वालों कि अगर हमें लोमड़ी रास्ते में सामने से दिखाई दे तो हमें कष्ट मिलता है। बाई अथवा दाई ओर से लोमड़ी दिखे तो हमें हमेशा शुभ कार्य की प्राप्ति होती है। अगर दाई ओर से काली पूंछ वाली लोमड़ी दिख जाए तो हमें जितने भी कार्य हैं उन सब में सफलता प्राप्त होती है। अगर सफ़ेद लोमड़ी दिख जाए तो हमें नौकरी मिल जाती है। अगर लोमड़ी लड़ाई करती दिखाई दे तो उससे हमें पराजय हार का सामना करना पड़ता है सुनने वालों।

सियार गीदड़। यदि हमें सियार दिए हुआ का स्वर करता है और दिशा में दिन के पहर में और उसका फल अगर पूर्व दिशा में प्रथम पहर में करे तो किसी राज्य का पतन, दूसरे पहर में करे तत्कालीन सत्ता की पराजय, तीसरे पहर में करे देश में विभाजन, चौथे पहर में करे प्राकृतिक आपदा। अगर दक्षिण दिशा में दिखे तो प्रथम पहर में करे शत्रुओं का भय, दूसरे पहर में करे जनता को कष्ट, तीसरे पहर में करे राजा को जनता से कष्ट, चौथे पहर में करे किसी की मृत्यु का समाचार। सुनने वालों, इन सब का ये मतलब है कि सियार और गीदड़, अगर ये दो जानवर हमें दिखाई देते हैं और अगर पूर्व दिशा में दिखाई देते हैं, अगर दिन के प्रथम पहर में दिखाई देते हैं तो किसी राज्य का पतन, कि कोई भी राज्य है वो नष्ट हो जाता है। अगर दूसरे पहर में दिखाई दे तो तत्कालीन सत्ता की पराजय, कि वहाँ की सत्ता पलट जाती है, वहाँ की सरकार पलट जाती है। अगर तीसरे पहर में देखें तो देश में विभाजन, कि देश का विभाजन, देश में बंटवारा हो जाता है। और अगर चौथे पहर में दिखे तो प्राकृतिक आपदा, कि जितने भी प्राकृतिक आपदा बाढ़ आ जाएगी या कुछ भी हो सकता है। और अगर दक्षिण दिशा में दिखे, प्रथम पहर में दिखे तो शत्रुओं का भय, तो उससे ये शत्रुओं से राज्य को भय लगा रहता है कि शत्रु हमला ना कर दें। अगर दूसरे पहर में दिखे तो जनता को कष्ट, कि जितने भी जनता है देश की उन सबको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर तीसरे पहर में दिखे तो राजा को जनता से कष्ट, कि जो वहाँ का राजा है जनता अपने राजा को कष्ट देगी। अगर चौथे पहर में दिखे तो किसी की मृत्यु का समाचार सुनाई देता है सुनने वालों।

सबसे बड़ी जिंदगी है, जिंदगी से बड़ा प्यार है, प्यार से बड़ी दोस्ती है, दोस्ती से बड़ा रिश्ता है। निभाओ तो अपना है और भूल जाओ तो सपना है।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैंने जो आप सबको ये थोड़ा सा प्रोग्राम अपनी तरफ से सुनाया, ये सब स्वपन विज्ञान से लिया गया है और मेरे को लगता है आप सबको थोड़ा सा पसंद आया होगा।

बंसी सब कुछ त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: आगे बढ़ चलते हैं राजेंद्र जी की ओर।
1: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हमारा जो कार्यक्रम है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कुछ ना कुछ नया खोज के लाते हैं। इस बार जो नया है वो हरि प्रबोधिनी एकादशी का निर्णय है और उसका कार्यक्रम करेंगे। तो फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं जो सुनते हैं इतने प्रेम से इस गीत कार्यक्रम को और गीतों को, मुझे लगता है उनको बड़ा पसंद आएगा और उनके सब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सदैव काम आती रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्यों ना एक सुंदर सा जो लोग उदासी हैं उनके लिए लगाया जाए, उदासी मन काहे को भरे।

0: करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों, यहाँ जो हम सब आज उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में, तो जैसे आपने सुने हैं कि राजेंद्र जी ने हम सबको और ये संदेश दे ही दिया है कि विषय क्या है आज का, और विषय के बारे में अभी बातचीत जरूर होने वाले है, पर अभी तो कुछ तैयारी हो रहा था जल्दी जल्दी से। और यहाँ भी मैसेज इंडिया से भाई राजीव शर्मा जी के भी आए हैं कि मैसेज में ये है, शांता जी मैसेज तो बड़ा सुंदर मैसेज है, क्या मैं इसे सुना सकता हूँ या अभी नहीं?
1: जरूर से सुना देना,
2: अगर मैसेज आया तो सुनाने में कुछ हर्जा नहीं होना चाहिए।
0: हर्जा होना नहीं चाहिए,
2: तुरंत चाहे सुनाना।
0: तो ये मैसेज है कि कलम के अंतर्गत ना, कलम तभी साफ और अच्छे लिख पाते हैं जब वो थोड़ा से झुक करके चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। और इसी तरह से ऐसा सुंदर संदेश जो भाई राजीव जी ने भारत देश से हम सब के लिए व्हाट्सएप द्वारा भेजे, तो हम उन्हें जरूर आपके लिए सुनाते रहेंगे। और आज का विषय के अंतर्गत जो हम सब ये सुंदर विषय है राजेंद्र जी, उसके बारे में आप क्या सुनाने वाले हैं और इसे हम क्या समझ सकते हैं? इस
2: आज का जो विषय है वो हरि प्रबोधिनी एकादशी का विषय है। जैसे कि हम बता ही चुके पहले कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के विषय के बारे में बात करेंगे, और वो विषय इस प्रकार से है कि इस वर्ष कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी अर्थात देवोत्थानी एकादशी पर्व को लेकर विविध पंचांग कैलेंडर व सोशल मीडिया में, जैसा कि वाराणसी के ज़्यादातर पंचांगों में होगा, जैसा कि विदित हो कि सूर्योदय 6:36 पर यानी उदय तिथि कालीन एकादशी जो कि पूरे दिन प्रशस्त रहेगी, इसी दिन स्मार्त व वैष्णव जन सभी को एकादशी का व्रत रखना होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। क्योंकि निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार दशमी युक्त एकादशी को व्रत के लिए निषिद्ध माना गया है। इसका विस्तृत विवेचन पृष्ठ संख्या जो इसमें वृतांत है उसमें दिया जाता है, जिसका वर्णन असंभव है करना, इसलिए थोड़ा सा संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। काला काष्ठादिगत्ति वै दृश्यति दशमी विभो एकादश्याम न कर्तव्यम व्रतम राजन कदाचित। निर्णय सिंधु प्रथम प्रेक्ष पृष्ठ में लिखा है कि ध्यान दें कि इस वर्ष रात्रि मृत्युलोक की भद्रा रहेगी, अतः इस अवधि में देव प्रबोधिनी व तुलसी विवाह बिल्कुल न करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो मदरत्न में 12 पुराण का मत है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सोमवार के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से युक्त हो तो अन्यथा कही गई है। एकादशी सोमायुक्त कार्तिकेय मासी भामिनी अर्थात इस दिन किया गया व्रत गंगा स्नान दान पूजन तथा श्रवण आदि का अत्यंत फल प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन यथासंभव दान पुण्य आदि शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए।
0: राजेंद्र जी, अगर हम इतना जल्दी जल्दी से ये संदेश अपने सुनने वालों को और जरूर पहुंचाएंगे, तो इसमें थोड़ा से हम सबको और इसे निचोड़ना है। और ये हरि प्रमोदिक एकादशी, ये एकादशी के अंतर्गत में अभी तो आगे में काफ़ी, पर इसी में थोड़ा से हम सब और भी संदेश रखते हैं, क्योंकि अभी तो हम अभी समझा नहीं इसमें, तो पहले क्यों ना एक गीत के ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद में हम सब इसे खूब अच्छी तरह से निचोड़ते हैं कि संदेश जो एकादशी का है आज का और हमें कैसे क्यों और कब करना है, उस अंतर्गत में हम सब अभी और जानकारी पाने वाले हैं। सुनने वालों आप ध्यान देना। राजेंद्र जी, पहले क्यों ना एक सुंदर सा और शांता जी का पिटारा सा निकाला हुआ।
2: शांता जी के पिटारा से यही निकाला है कि यदि नाथ का नाम दया निधि है,
0: हाँ,
2: विष्णु भगवान प्रिया श्री देवराज जी ने गाया है और बहुत ही सुंदर भजन है, उसको सुनते हैं, चलते हैं भजन की तरफ।

0: राजेंद्र जी, आपने तो हम सबको ये एकादशी का और कब समय, कब तिथि है, कब क्या है, पर इसमें थोड़ा से और ये, क्योंकि ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश के लक्ष्य ये है कि हम अपने जीवन का ज्योति जो जल रहा है इस समय, उसमें थोड़ा और प्रकाश होना चाहिए। तो राजेंद्र जी, इसमें अब ये बात हो जाता कि आप इसमें कुछ और प्रकाश डालिए।
1: चांद भी क्या खूब है।
0: वाह राजेंद्र जी, इस बात तो सही है, चांद तो क्या खूब है।
1: चांद भी क्या खूब है, न सर पे घूंघट है न चेहरे पे बुरका।
0: लो,
1: कभी करवा चौथ का हो गया तो कभी ईद का तो कभी ग्रहण का। अगर जमीन पर होता तो टूटकर विवादों में होता, अदालत की सुनवाई में होता, अखबार की सुर्खियों में होता, लेकिन शुक्र है आसमान में बादलों की गोद में है, इसलिए जमीन में कविताओं और गजलों में महफूज है। पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं लोगों को कि चांद के बारे में कभी कुछ इस प्रकार से चांद का कार्यक्रम रहा। अब संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे।
0: कहने की तो बहुत है, पर कहना ये है कि अभी तो हमें ये एकादशी व्रत इसके बारे में एक जानकारी कम है, तो जरा हम सबको इसमें थोड़ा और जानकारी दीजिए ताकि हम सब इसे बढ़िया से समझ पाए। ये तो हम जान गए कि किस दिन है और कब क्या करना, पर
2: नहीं अभी तो हमें यहाँ पे
0: यहाँ तलक हम सबको आप कुछ सुनाई नहीं, तो हमें इसका जानकारी दीजिए हो सके तो राजेंद्र जी।
1: हाँ, एकादशी के बारे में जो आप लोग जानकारी चाहते हैं उसके अनुसार मदरत्न में 12 पुराण का मत है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। हर महीने एकादशी आती है, लेकिन जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका वृतांत कुछ और ही ज़्यादा रहता है। तो एकादशी सोमायुक्त कार्तिक के मास में भामिनी, अर्थात जो अगर सोमवार को एकादशी हो गई कार्तिक मास में तो उसका ज़्यादा विधान रहता है। तो एकादशी में, एकादशी के बहुत सारे श्लोक हैं। उद्दिथान ओ गोविंदम त्यजिंद्रो जगवंतति त्वद्दी सुप्ति जगन्नाथ जगत सुप्तम निभिभेदा उत्थष्टो बारह दृष्टम दृत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राण घाती ना लोके मंगलम कुरु। तो एकादशी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे आएगी। अब आप आगे की बात करते हैं कि देवोत्थान एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा का विधान है। कई जगहों पर इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराने की परंपरा भी रही है। ये तिथि देवों के जागने की होती है, जिसको इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। जानिए व्रत की विधि और नियम क्या है। आप सब लोगों ने तुलसी विवाह की देवोत्थानी एकादशी पर्व का देखा होगा। देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु समेत सभी देवता अपनी योग निंद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। जानिए व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है। देवोत्थानी एकादशी, इस दिन निर्जल या केवल जलीय पदार्थ का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है।
0: तो राजेंद्र जी, निर्जल,
1: निर्जल मतलब बगैर पानी पिए।
0: बगैर पानी पिए
1: जी,
0: और सुबह से रात तक।
1: सुबह से रात तक।
0: और दूसरा क्या था, निर्जल और
1: जलीय, यानी कि कुछ लोग बगैर पानी के रह सकते तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बगैर जल के, कुछ लोग जल पी के एकादशी कर सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाना, कुछ नहीं, केवल पानी पीना, या बगैर पानी के रह सकते तो वो भी अच्छा।
0: तो ऐसा भी होता है, और ये इसका मेरा अंदर से ये निकल रहा है कि इसमें जरूर कुछ लाभ होगा, तब हाँ। तो ना ये किया जाता है, पर अभी तो मैं आशा रखता हूँ कि अभी आप हम सबको जरूर सुनाने।
1: हाँ, इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार यानी कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
0: तामसिक माने तो?
1: तामसिक मतलब तीन गुण होते हैं, सत, तम, रज, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। तो तामसिक भोजन का मतलब है कि जैसे आपने लहसुन प्याज ले लिया, ज़्यादा मसाले, मांस, मदिरा,
0: वो बिल्कुल ना,
1: हाँ वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो सब तामसी भोजन के अंतर्गत आता है। तो इस दिन कम
0: ऐसा
1: कम
0: नहीं चाहिए, बिल्कुल ना
1: ऐसा ना चाहिए खाना।
0: पर तामसी में नमक आता है भी?
1: नहीं नमक नहीं आता, नमक तामसी में नहीं आता है,
0: नमक तामसी में नहीं आता
1: नहीं।
0: अच्छा, तो
1: तामसिक का मतलब होता है कि जिस भोजन को करने से हमारे अंदर तमोगुण जागता है वो तामसिक भोजन है।
0: ऐसा,
1: तो सात्विक तामसिक राजसिक तीन प्रकार के गुण हैं और भोजन के अनुसार उनका होता है, उसका जो जैसे भोजन करते हैं वैसे गुण प्रबुद्ध होते हैं।
0: राजेंद्र जी, इसमें जब मैं ज्यादा ना पूछ लूं तो ये व्रत सूर्य उदय से पहले होता है स्टार्ट?
1: व्रत तो जब आप उठे तो उस समय कुछ नहीं, यानी कि सूर्य उदय के पहले कुछ खा लिया और फिर जब उदय हो गया तब नहीं। व्रत तो जब आपने रात्रि का भोजन किया तो फिर इसके बाद जो निर्जला व्रत है वो उसके बाद जल भी नहीं लेना चाहिए, और जल लेते हैं तो पानी पी सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहती है या दवाई खाना होता है तो उन लोगों
0: तो
1: को
0: बेहतर ना करें,
1: तो बेहतर है कि वो लोग ना करें जो बीमार हैं लोग, तो वो नहीं करना चाहिए। जो सुखी है एकदम ठीक है कर सकते हैं उन लोगों को करना चाहिए, कुछ लोग अगर नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए।
0: तो शांता जी, आप क्या करते हो एकादशी व्रत?
2: नहीं
0: करते हैं,
1: तो इस बार करने का प्रयास करना।
0: तो इस बार हम लोगों ने रेडियो से ये कार्यक्रम को ऐसे तैयार कर रहे हैं तो जरूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत के अंतर्गत में अभी और भी ढेर सारे जानकारी है, पर राजेंद्र जी क्यों ना हम सब शांता के पिटाड़ा के और पहले देखते हैं और
1: हाँ,
0: देखते हैं कि क्या और लेकर आए हम सब के लिए।
1: जरूर जरूर।

0: हरि ओम हरि ओम। शिव ही सब है, शिव ही शंकर, शिव ही पूजा, शिव ही। जिस प्रकार अभी शंकर जी का आपने बहुत ही सुंदर भजन सुना, चलते हैं आगे की ओर।
1: जरा से मुझे तो मौका दे दो कुछ कहने को।
0: जी बताइए, जरूर
1: थोड़ा से मौका मिल जाए, क्योंकि काफी लोग हम लोग का इस समय जुड़े हुए हैं इंग्लैंड से। जैसिका जी जो इस समय हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, गीता नेगी जी जो भारत दिल्ली से और कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और
0: दिल्ली से नहीं, गीता नेगी देहरादून से।
1: मंजू जी भी इस समय भारत से ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और भी अन्य देशों से ये कार्यक्रम को सुना जा रहा है। पर राजेंद्र जी, पता है यहाँ एक संदेश आया, और वो तो मैं सुनाना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: सुनाने का ये है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है ना
0: जी,
1: जब तक तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है,
0: कैसा है।
1: तो आज का कार्यक्रम दोस्तों जो एकादशी, एकादशी के अंतर्गत में अभी तो हम सब उस ओर धीरे धीरे छलांग लगा रहे हैं, और जानकारी हम सबको मिलने वाले हैं। राजेंद्र जी, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बताइए कि एकादशी व्रत के अंतर्गत में हम कैसे और कहां और कब और क्या क्या संदेश है इसमें।
0: देखिए, जो एकादशी में देव उठनी एकादशी है, वो उसका विधान ज्यादा है,
1: क्योंकि ये सभी एकादशी में से सबसे मूल्य,
0: हाँ सबसे बड़का एकादशी रहे,
1: सबसे बड़का एकादशी।
0: तो इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, स्वच्छ एकदम साफ वस्त्र। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। घर की सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बना लें।
1: आकृति माने तो
0: ऐसा,
1: ओह यानी कि आपने यहाँ ऐसे, हाँ चित्र
0: आकृति,
1: क्योंकि आप रेडियो से कर देते लो, पर ये सुनने वालों दर्शकों नहीं है।
0: इस व्रत, इसके बाद एक ओखली में गेरू से भगवान हरि यानी विष्णु का चित्र बना ले। ओखली जाने ला,
1: ओखली
0: ओखली ना जाने,
1: ओखली शांता जी क्या है
0: ओखली में जिसमें धान कुटा जाए, सरनाम में रहे,
2: ओखली मूसर,
0: मूसल हाँ।
1: तो उससे तो सुरीनाम में
2: ओखली बोले जो है
0: हाँ।
2: बार में
0: या जी,
1: तो राजेंद्र जी सुरीनाम में जरूर है, जितना चटनी सरनाम में बनाया जाता था पहले ओखली मूसर से पीस पीस कर।
0: नहीं, वो ओखली मूसल वो दूसरा चटनी वाला है, ओखली एक बड़ा रहे जिसमें धान
1: लकड़ी का
0: जाए,
1: लकड़ी का,
0: हाँ लकड़ी का भी रहे और पत्थर का भी रहे, दोनों चीज का।
1: हाँ,
0: अब उस ओखली के पास मिठाई, फल, सिंघाड़े और ईख यानी गन्ना रख कर उसे डलिया से ढक दे। इस दिन रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए, और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को यह कहते हुए उठाइए, उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास, इस प्रकार से कहना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र है, उत्तिष्ठ गोविंद त्यजे निंद्रा जगत्पत्ते त्वयि सुप्तो जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्थित्थे चिष्टते सर्व मुक्तिष्ठो तिष्ठत माधव गता मेधा वित्यचेवा निर्मलम निर्मला दिशा सरदानी पुण्य चा पुष्टानी गृह मम केशवा। इस प्रकार से भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र है, इस प्रकार करना चाहिए।
2: आपने कहा विष्णु भगवान को जगाने के लिए
0: जी,
2: तो विष्णु भगवान सो रहे थे का?
0: हाँ, चार महीने भगवान विष्णु शयन कक्ष में चले जाते हैं,
1: शयन
0: शयन कक्ष में
2: सोने के
0: जो
2: लिए।
0: हाँ,
2: चार महीने
0: से, जैसे जे अषाढ़ सावन भादो अश्विन, चार महीने कार्तिक में उसका देवोत्थान एकादशी होता है, उस समय भगवान जागते हैं।
2: तो जैसा आपने कहा कि चार महीने शिव भगवान विष्णु सोते हैं, तो
0: शेष नाग की सैया पे सोते शयन में चले जाते हैं।
2: हाँ जी।
0: और इसके बाद इसलिए तो उस समय कोई शादी विवाह इत्यादि शुभ कार्य नहीं होता है। हाँ। जब ही नहीं हो पाता है,
2: वही मैं पूछ रहा,
0: और करना भी नहीं चाहिए उस समय, क्योंकि हाँ। भगवान उस समय सोए हैं, और सोए में जो कार्य हुए वो शुभ नहीं माना जाता है।
1: ऐसा
0: ऐसा
1: तो इसीलिए राजेंद्र जी भारत में मैरी यानी कि शादी का सीजन होता है।
0: हाँ, भारत में शादी का सीजन इसीलिए होता है। यहाँ पे तो मैंने देखा है कि हर सैटरडे संडे को कभी भी शादी करते हो, फिर जाके बाद में कहते ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो अपनी सुविधा के अनुसार शादी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो रीति रिवाज के अनुसार और नियम के अनुसार उसके अनुसार शादियां करनी चाहिए।
2: हाँ, अगर ये हम अकाउंट करें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर,
0: नहीं नहीं सितंबर अक्टूबर नवंबर में कुछ दिन होते हैं शादियों के दिन होते हैं। अच्छा। जिसमें कर सकते हैं, तो पंडित लोगों के पास सारा इसका लेखा जोखा रहता है, कब कर क्या करना चाहिए,
1: ज्योतिष
0: शास्त्र के अनुसार उनको पूछना चाहिए कि कौन सा दिन शुभ है शादी के लिए, उस समय करना चाहिए।
1: अच्छा, तो ये भी एक बात हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें भी अपना, हम ना सिर्फ अपना कोई शुभ कार्य करें तो बस अपना ही आखंदा ख्याल करें, पर हमें ज्योतिष और विद्या तथा हमारे ज्योतिष के अनुसार भी कुछ ना कुछ और संदेश को निकालना चाहिए और उसके माध्यम से कुछ ना कुछ भी कार्य करें। पर आजकल राजेंद्र ये ऐसा होता है, लोग अपना मनमानी करने लगे हैं, और ये भी है कि कुछ लोग जिसके ज्योतिष का ज्ञान शायद उतना ना हो और दबा देते हैं दृक पंचांग आदि, और उसमें से अपना दिन निकाल लेते हैं, पर क्या वो ठीक है या नहीं?
0: नहीं, ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है,
1: उसे बहुत जरूरी है,
0: तभी करना चाहिए,
1: तभी करना चाहिए,
0: वो ज्ञान हो उसी के अनुसार शादी का दिन निकालना चाहिए।
1: और नहीं, पर ना सिर्फ शादी, सब
0: शुभ मुहूर्त, हर चीज का शुभ मुहूर्त,
1: क्योंकि शुभ कार्य के लिए, जैसे कि
0: शुभ मुहूर्त ना निकालेंगे तो कार्य उल्टा ही होता है।
1: हाँ,
0: हमने भी देखा है।
2: और ये केवल ना शादी के लिए, जैसे गाड़ी खरीदना हो,
1: गाड़ी
2: घर में
1: खरीदना,
2: प्रवेश करना,
1: नया घर लेना,
0: नया घर लेना हो, गृह प्रवेश हो गया, गाड़ी खरीदना या किसी को अपने साथ लाना या ले जाना कहीं भी, उस अनुसार होना चाहिए। जी, वापिस बढ़ते हुए अब आते हम देवोत्थान एकादशी की कथा पे। तो क्या है एकादशी की कथा? एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्ष से सो जाते हैं, तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया करें। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम का मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवों और खास कर तुम्हें कष्ट होता है, तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में और शयन किया करूँगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने, क्योंकि भगवान विष्णु ने साल भर में 4 महीने शयन कक्ष शयन की बात करी है, क्यों ना हम एक सुंदर से नगमे की ओर बढ़ते हैं और फिर आते हैं वापस।
1: तो राजेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का 4 महीना तक अवशयन, यानी कि वो भगवान जो अपने शयन पे रहते हैं, तो उसके बाद में और जैसे कि और भी कार्य जरूर अभी हम सब सुनने वाले हैं कि जब भगवान विष्णु शयन पे है तो कैसे और कार्य किया जा सकता है ना?
0: जी,
1: तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप गाना भी लगा चुके हैं, तो गाने की ओर बढ़ने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी,
0: जी
1: कि हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। तो दोस्तों, हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद हम सब अभी आपके लिए एकादशी व्रत के अंतर्गत में और भी संदेश लेकर आए हैं, अभी आपके लिए रखा जाएगा
0: जरूर।

0: जय जय जय तुलसी माता। राजेंद्र जी, इतना सुंदर गीत आपने रखे, तो सुंदर गीत को सुन करके मेरा दिल में कुछ और इच्छा हो गया, क्योंकि कार्यक्रम जो आज का है विषय एकादशी है, और एकादशी के बारे में अभी हम सबके और भी संदेश को प्राप्त होना है। पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि श्रीमती लक्ष्मण जी जो हम सबके ये कार्यक्रम सुनते हैं और हम सबके लिए एक क्रत और जा करके पानी का तैयारी करके व्यवस्था करके और यहाँ स्टूडियो में हम सबके लिए पहुँचा दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहा जाता है दीदी जी से। और हम सब ऐसे हम सबका हौसला भी और बढ़ता है। पर राजेंद्र जी, जय जय जय तुलसी माता, तो जरा से थोड़ा से माँ तुलसी के बारे में हम सबको भी बता दीजिए, यही एकादशी का और कथन के अंतर्गत।
1: जरूर, तुलसी के बारे में बता देते हैं। तुलसी कौन थी?
0: हाँ, यही यही बात, तुलसी माँ कौन थी?
1: तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी, जैसे आजकल सब लोग पौधा पौधा ही समझते हैं, वो पिछले जन्म की बात करते हैं कि तुलसी थी कौन असल में, जितना इसकी पूजा होती है इतना इसका रकलामा हो रहा है, तो हाँ। थी कौन, क्या है? तो पिछले जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम बृंदा था। बृंदा समझी ला?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नाम तो बृंदा, जैसे यहाँ पर हाँ। लड़की का नाम
1: शांता है।
0: हाँ
1: हाँ, वैसे ही राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी, बड़े ही प्रेम से ही भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया।
0: जलंधर उसका पति का नाम?
1: हाँ, जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, वो भी राक्षसी था। बृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो बृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और बृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए, सबने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान कहने लगे कि बृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो है, अगर दूसरा कोई उपाय नहीं है अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और बृंदा के महल में पहुंच गई। जैसे ही बृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छूने लगी। जैसे ही उनका संकल्प टूटा युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर बृंदा के महल में गिरा। जब बृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने इस रूप में आ गई, पर वे कुछ न बोल सके। बृंदा सारी बात समझ गई, उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब बृंदा जी ने भगवान को वापस वैसे ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला, तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन इसी तुलसी विवाह के रूप मनाया जाता है, जा सकता नहीं, मनाया ही जाता है। तो इस प्रकार से तुलसी का जो वृतांत रहा, इस प्रकार से रहा।
0: अच्छा संदेश जो आपने हम सबको और माँ तुलसी के अंतर्गत भी रख दिए। तो राजेंद्र जी, यहाँ एक मैसेज आ गया
1: जी।
0: मैसेज ये है कि इस खोज में मत उलझे कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखे कि हम खुद इंसान है या नहीं। तो थोड़ा कड़क संदेश है, पर इसमें भी बाकी कुछ वजन है। आगे देखते हैं दोस्तों कि शांता जी आपको क्या, आज थोड़ा कम कह रहे हैं शांता जी।
2: आप लोग जोर तोर से बात कर रहे थे इसलिए हम थोड़ा से बैकग्राउंड हो गए।
3: हाँ, पर तुलसी के बारे में मैं ये कहूँगी कि हर घर आंगन में तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती है वो घर स्वर्ग समान है,
0: वो घर स्वर्ग समान हो जाता है। ये बिल्कुल बात सही है। पर शांता जी, ऐसा है, हमें जरूर भटकना नहीं चाहिए अपने और विषय से, पर तुलसी माँ कहीं कहीं होते नहीं है, कोई कोई घर पे नहीं होता है ना?
3: ये तो मुझे पता नहीं।
0: ऐसा कोई कहते कि हमारे घर पे तो नहीं हो रहा है तुलसी,
3: तो कोई कारण होगा।
1: तुलसी एकदम शुद्ध, उनको शुद्ध स्थान पे ही तुलसी होती है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा हुआ तो वहाँ पे तुलसी
0: तो नहीं,
1: नहीं हो पाती,
0: नहीं हो पाते
1: नहीं।
0: ऐसा होता है क्योंकि हमें लोग कितने बार कहीं हम गए तो बोले कि तुलसी हमारे घर पे नहीं होता है ऐसा। तो यानी कि यही बात है ना राजेंद्र जी, कि कुछ पवित्रता में कुछ कमताई होता होगा ना।
3: पवित्रता में भी कुछ कमताई होगा और घर में सभी कोने में सभी जगह पे ये जैसा भी राजेंद्र जी ने कहा ना, धारा नहीं जाता।
0: वो भी है, उसमें भी भेद है,
3: उसमें भी एक भेद है।
0: ऐसा तो राजेंद्र जी, अभी उसके बारे में हम सब शायद समय मिले, क्योंकि एकादशी व्रत, और आपने कहे थे कि भगवान जो चार महीने तक और अपने